0: सूही महला चौथा हर हर नाम भजियो परखोत्तम सब बिनसे दालद दल भा।
1: धन गुरु रामदास पातशाह जी दे मुबारक रसना तो उच्चारण होया सूही राग का शब्द है जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 731 अंग ते सुभाईमान है। ये मेरे पातशाह वो ने जिन्ना पास भट्ट जी आए अज नाल ही नाल भट्टां दा मिलन दिवस भी है जिस संबंध में मंजी साहब श्री अखंड पाठ साहब जी दे संपूर्णता उपरंत इतने दीवान भी सजने ने पाठ की कहते ने हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखखाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो केड़ा उत्तम पंथ सुनिया एक उत्तम पंथ सुनियो गुरसंगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरनाई। असी औगुणा नाल भरे पए हाँ साढ़े कोल एक भी गुण नहीं है जिंदगी जहर नाल जुड़ी रही ते अमृत छड़ी बैठी रहे पर ऐसी अंदर सोच आई भी मैं किसे उत्तम पंथ वाल चलां ते वो पता चलिया उत्तम पंथ है गुरु दी संगत। वो धन गुरु रामदास पातशाह सिंघासन ते सुभाईमान ने उन्हां दी शरण विच चलिए ते हुण भट्ट जी कहंदे ने मेरी अरदास है पातशाह आए हैं आप जी कोल सानू अपनी शरण विच रख लेना। अरदास कबूल पै गई शरण विच रख लिया उन्हां भट्टां दे मुखों निकली ओ बाणी रहिंदी दुनिया तक धन गुरु रामदास जी दी शरण विच रहण वाली श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज हो गई। तो धन गुरु रामदास पातशाह जी फरमान करदे ने सूही महला चौथा हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम सब बिनसे दालद दलगा। ए मेरे पातशाह जी रहमत करो कदी मैं नाम सिमरन विच चला जावा। जरा एक गल ध्यान च रखियो जिन्ना ने हरी नाम भजिया अंदर सुरत विच जपिया उन्हां दे सारे दुख चले गए उन्हां दे दालद ते दालद दे अर्थ ने दरिद्रता गरीबी कंगालता वो चली गई। बिपर सुदामे दालद पांज रेमन तू पी भज गोबिंद हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम सब बिनसे दालद दलगा। ये हकीकत है अगर गुरु उपदेश अंदर वस जाए सिमरन विच जुड़ जाइए नाम सिमरन पुण इकट्ठे करता। कल मैं एहो पुण गुण गोविंद गाहे जदो गोविंद दे गुणा दा गाह पाया बार बार जपया ध्यान च रखियो वो नाम सिमरन साडे शुभ कर्म बन गए वो शुभ कर्म बन गए नाल वाहिगुरु जी दी असीस ते कृपा दृष्टि हो गई। दो गल्लां ने एक सिमरन शुभ कर्म बन गए नाल मालक दी रहमत उसका कर्म हो गया ते फिर जिंदगी दे सारे दालद सारा दरिद्र सारी गरीबी सारी कंगालता चली गई। कदी कवि हीर जी बहुत गरीब सन कविता कमाल दी उचारते सन कवि बड़े महान सन पर पैसे पक्षों बहुत गरीबी सी। सुनिया दसम पातशाह कवियां दी बड़ी इज्जत करदे ने दसम पातशाह जी कोल चले जाइए ते बख्शिश ते रहमत नाल झोलियां भर देंदे ने। इस भावना नाल आई आके सतगुरां दे समक्ष एक कविता शुरू कर दी, पास ठाडो झगरत झुगत दरीरे मोहे, बात ना करन पाऊं महाबली मीर सों, दारद कपूत तेरो बनियो है मरन आज, करके सलाम विदा हुजो कभी हीर सों, नातर गोबिंद सिंह बिकल करेंगे तोहे, टूक टूक ठाडे हैं दानन के तीर सों। महाराज मेरे कोल खलोता है, मैनू इसने बड़ा चुकाया है, दर दर चुकाया है, मैं इस दी अगे रत्ती भर भी अपना जोर नहीं चला सकिया। ते सतगुरु कहिंदे कौन है? महाराज मेरा दरिद्र, मेरी गरीबी, मैनू इन्हें वड्डियां वड्डियां अगे चुकाया है, महाराज इन्हू छोटियां अगे भी मैनू चुकाया है, मेरी अंदर कोई पेश नहीं जांदी। अज मैं दरिद्र नू कहिंदा, दरिद्र चला जा, दारद कपूत तेरो मरन बनियो है आज, करके सलाम विदा हुजो कभी हीर सों। कहिंदा तू अज मैनू सलाम करके तुर जा, अगर ना गया ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोल बाहर तीर भी चलांदे ने, ते जदों दान दा तीर चलांदे ने ना, ते झोलियां भर देंदे ने ते तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कलगीधर महाराज इस दी कविता भी सुनी, दिल दा भाव भी सुनिया, सतगुरां ने रहमत करके इन्ना क खजाना कवि हीर नू दिता, नाम दी दात दे के अपना सिख भी नवाजिया, ते सिखां नू कहन लगे हुण कवि हीर नू इंदे नगर छड़ के आओ, हाथी ते सवार करो, नाल नगारा बजदा जाए, इस कोल धन संपदा दी ओ पोटली भी कोल बजी होवे, ते जदों नगर विच जावे ना ते पता चले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर दा मंगता बादशाह बन के घर आ रहा है। गल थोड़ी ध्यान च रख लेना, यह मेरे ओ मालिक दा दर है जिथे जन्म जन्म दा दरिद्र गरीबी कंगालता ते आलस ओ सदा लई दूर हो जांदा है। मेरे पातशाह कहिंदे ने उस वाहिगुरु दा नाम भजो जी,
0: पौ जन्म मरना मिटियो गुर सबदी, हर आस तिर सेव सुख समगा।
1: सिमर नाल अकेली गरीबी दरिद्रता ही दूर नहीं हुंदी, जम्मन मरण दा डर भी मुक जांदा है। देखो मनुख दे अंदर बड़ा सहम रहिंदा है, हाए मर जावांगा, दुनिया छड़ जावांगा, कि मरण तो बाद मैनू फिर जन्म लेना पाएगा। सतगुरु कहिंदे ने सिमरन भरी अवस्था विच होएगा उनका भाव डर, जन्म ते मरण दा वो सारा चला जाएगा, क्योंकि गुर शब्दी ये गुरु दा शब्द है, ये सिमरन गुरु दा शब्द है, सिमरन जीवन जाच गुरु कोलो मिलती है। ते जदों गुरु दे शब्द ते पहरा दिता, मैं बेनती करा, धन गुरु रामदास पातशाह जी कहिंदे ने, भलिया तू गुरु दा सिख है ना, तू सिख अखवाना है ना, ते गुर सतगुर का जो सिख अखाए अखवाए सिख, ते भलके उठे ना, अमृत वेला संभाले ना, ते अजे सिख अखवाउण विच कमी रह गई है, अखवाया ही सिख सिख नहीं है। गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ, हर नाम ते आवे उद्दम करे, भलके प्रभाती इशनान करे, अमृत सर नावे, पहला पानी दा इशनान करे, फिर बाणी दा इशनान करे, नाम दा इशनान करे, इशनान करे अमृत सर नावे, उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विख पाप दोख लै जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहिंदिआं उठदिआं हर नाम ते आवे, जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन पावे। केड़ा गुरसिख गुरु दे मन नू पौंदा? जेड़ा गुरु दे शब्द दे आधार दे वाहगुरु दा सिमरन करदा, ते गुर शब्दी अस्थर हरी रब नाल जुड़ जांदा, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਮੁੱਖੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਹਾਏ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀ ਏ, ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਦਾਤਾ ਦੀਏ, ਕਿਸ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ।
0: ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਤ ਬਿਰਕਾ,
1: ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮੋਧਕ ਹੋਇਓ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਆਖੀਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਆਪੂ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੋਲੀਏ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਰਾਮ ਭਜ ਰਾਮ ਭਜ, ਜਨਮ ਸਿਰਾਤ ਹੈ, ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਵਾਸ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਐ ਭਲਿਆ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਤ ਪਿਰਗਾ, ਅਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ।

वाहेगुरु जीओ रख लेना, वाहेगुरु जी रख लेना। असी जन असी किरम हां, एक हुंदा कीड़ा, एक हुंदा किरम जिहड़ा अखां नाल नजर भी नहीं आउंदा। हम कीरे किरम सतगुर शरनाई कर दया नाम प्रगाश। मालिक जीओ हर राख राख जन किरम तुम्हारे, शरनागत पुरख प्रतपलगा। असी शरनागत हां ते आप प्रतपालन वाले हो, जेड़ा शरण विच आ जाए, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। इहो बिरद स्वामी संदा, मालिक तेरे कोल आया, तेरे अगे झुकिया। असी अंदरों धर के कहने हां साडी बांह फड़ी रखियो महाराज, सानू शरण विच रखियो, चूंके तुसी शरण आए दी प्रतपालना कर

तुम समर्थ हो, इतनी शक्ति दे मालक हो भी जो चाहो कर सकते हो। धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे, बड़ी समर्थ है तुहाडे कोल। भिखारियां दियां झोलियां भर के उन्हां नूं रजा सकते हो। तुम समर्थ पुरख वड्डे प्रस्वामी, मोको कीजा दान, मैनू दान दियो, ऐसो दान देहो जी संतो, जात जियो बलहार, कृपा करो मैनू नाम दा दान बख्शो। एक निमख मात्र भी मेरी सुरत किते जुड़ जाए।

जन नानक नाम मिले सुख पावे। पातशाह जी मैं नाम प्राप्त कर लवा, मैनु इंज लगदा जिवें तिन्ना लोकां दे सारे सुखां तो सरमोर सुख मैनु मिल गया। हम नाम विटों सद घुमगा, मैं नाम तो सदा अपने आप नू कोल कमाई करा, वार वार जावा, बलहार बलहार जावा। मैनू नाम मिल जाए, घर मिल गया, साडो शौकत मिल गई, सुंदर शरीर वस्त्र मिल गए, रिश्तेदार संबंधी मिल गए, हर तरह दियां सुख सहूलतां जिंदगी विच जीन वालियां मिल गईयां, एक नाम नहीं मिलिया। नाम मिल जाए, कृपा करो पातशाह जी। मेरी अरदास है, असी भी सारे अरदास करनी है, पातशाह कृपा करो मैं उठदियां बहिंदियां चेते विच रखां, मेरी रसना ते वाहिगुरु वाहिगुरु चले, मेरी सुरत वाहिगुरु जी दे घर रहन लग जाए, सारे औगुण विकार आपे नस जाणगे। मैं एक बेनती करांगा, तमाम दुखां दा विनाशक नाम है, तमाम सुखां दे देन वाला नाम है, तमाम औगुणां नू कटन वाला ओ वाहिगुरु दा नाम है। कृपा करके मैनू नाम एक छिन मात्र भी सुरत विच टिकन वाला मिल जाए, ये कृपा करके मैनू दान बख्शो जी। इथों तक अज दे हुक्म आए मुख वाक दी विचार, आओ लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी विचार नाल जुड़ना।

0: 1120 अंक ते स्वाभिमान है, केदारा राग है, पंचम पातशाह कलयुग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्ट लग बै तरो, एडा वड्डा शब्द दा बोहित बनाया जिस नू मैं बेनती करा सारे संसार दे पार करन लई बनाया, एडा वड्डा थाल बनाया जिस विच सारी लुकाई भोजन खा सकदी है। थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, ए सारे संसार दे लई मेरे पातशाह जी ने धन गुरु अर्जन देव जी ने शब्द दा बोहित बनाया। हर हर हर गुण गावो हो, वाहिगुरु दे गुण गाओ, मन नाल भी गाओ, शरीर नाल भी गाओ, रसना नाल भी गाओ। गुरु अर्जन देव जी ने पूछा सी, महाराज शरीर नाल किवें गाइए? कह लगी जदों संगत विच बैठ के गुरु के शब्द नू सुनोगे ते समझ लेना उथे तन गा रहा होवेगा। तो हर हर हर गुण गावो, उन्दे गुण गाओ, बंदियां दे गुण ही ना गाओ, रब दे गुण गाओ। पातशाह इन्नी मेरे ते कृपा कीती जे, ओ की कुछ जो तुसा मैनू नहीं दिता, एडे उपकार मेरे ते, तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा। तू साहब गुणी निधाना, गुणा का खजाना ही हो तुसी ते। तो हर हर हर गुण गावो हो,
1: करहो कृपा गोपाल गोविंद अपना नाम जपावो।
0: मेरे ते कृपा करो ऐ गोपाल, धरती दी पालना करन वाले, ऐ दया दे घर रहन वाले पातशाह जी, अपना नाम जपावो। चूके से सिमरै जिन आप सिमराए, पातशाह मत विच बैठ जाओ, मैं सिमरन अभ्यासी बन जावां, चूके आपू नाम नहीं जपया जा सकता, तुसी कृपा करो ते नाम जपया जा सकता है। मैं कई बार अर्ज कीती है, सिमरन करन ले तीन चाहिए ने, उद्दम शक्ति ते अकल दी सियानप। उद्दम ना करिए सिमरन ले, शरीरक शक्ति होवे, अकल दी सियानप भी होवे भी सिमरन करना चाहिए, नास्तक भी ना होवे। सियानप भी है, शरीरक शक्ति भी है, पर उद्दम नहीं करता। ताई क्या ना, उद्दम अगम गोचरो, उद्दम करो करावो ठाकर। मेरे पातशाह जी कहते ने उद्दम भी चाहिए, जे उद्दमी बड़ा होवे ते

आप जी दयाल होना, कठोर ते नहीं होना, दया करन वाले हो, तरस खान वाले हो, ते मैं आया हां शरण विच, ते सानू कृपा करके शरण आया नू पादशाह अपनी भगती दियो, अपनी भगत दे दयाला वड पागी नानक हर पावो। वड्डियां पागां वालियां नू रब मिलदा, रब दी भगती मिलदी है। ते एक गल सच करके जान लियो, जिन्ना कोल भगती आ गई है समझ लेना भगवान दे सारे खजाने आ गए ने। भगवती भगवंत भगत का रंग, जिस भगत नू भगती दा भगवान दी भगती दा रंग चढ़ गया है, यह समझ लेना जिंदगी विच उन्हें बहुत कीमती खजाना प्राप्त कर लिया। फिर कोई दुनिया की तत्ती वाह नहीं लग सकती। अग्गी पाला के करे, अग बाली होवे ते उत्थे पाले दी कीमत है, सर्दी लग जाएगी। सूरज के ही रात, जे सूरज चढ़े ते भला रात रह सकती है। अग्गी पाला के करे, सूरज के ही रात, चंद अनेरा के करे, पौन पानी क्या जात। आ पानी है, ये हवा है, ये तो नहीं है ना भी जे किसे नीवी जात वाले ना लग जाएगी। जे पानी वगदी नदी चो को नीवी जात वाला पानी भर लेगा ते की पानी दी मैं बेनती करा क्वालिटी बद जाएगी, यो घटिया हो जाएगा। पौन पानी क्या जात, धरती चीजी के करे, जिस विच सब कुछ होए, जमीन विच मैं बेनती करा इथे निम भी उगदी है, इथे गन्ने भी पे उगदे ने, ए धरती विच जो कुछ भी पैदा हो जाए मैं बेनती करा धरती किसे नू मनाही नहीं कर दी। ते ए मेरे मालक, जे तेरी शरण विच आ जाइए ते दुनिया दे दुख भरम पौ किथे रह सकदे ने। धरती चीजी के करे, जिस विच सब कुछ होए, नानक तां पत जानिए जां पत रखै सोए। जिस दी तुसी पत रख लेंदे हो, जिस ते तुसी कृपा कर देंदे हो, उस दियां झोलियां भर देंदे हो। मालक कृपा करियो, रहमत करियो, मैं शरण विच आया, मैं शरणागत होके एक दात मंगदा कि पातशाह नाम बख्शिश कर दियो। एक गल चेते रखियो, जिस कोल नाम आ गया दुनिया दियां सारियां बरकतां उस कोल आ गईयां। छाया प्रभ छत्रपत कीनी, सगली तपत बिनासी राम, दुख पाप का डेरा ढाठा, कारज आया रासी राम। वाहिगुरु दी छत्र छाया इठ जीवियो, सिमरन करके अरदास करके धन गुरु रामदास जी दे दर नाल जुड़ के शब्द गुरु ते भरोसा ते विश्वास रख के गुरसिखी जीवन दी परपक्ता रख के ते पतत पुने तो बच के जीवन बतीत करियो। दाते दे दर कर दियां सारियां बरकतां झोली विच पहन गईयां, लोक परलोक सेला ते चढ़दी कला बन आवेगी जी। इन्हां अखरां नाल कोटान कोट धनवाद, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, धन धन गुरु रामदास पातशाह जी का, अते गुरु घर के समूह प्रबंध का तह दिलों धनवाद। सिंह साहब मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहब, सिंह साहब ज्ञानी अमरजीत सिंह साहब जी का तह दिलों धनवाद। आईया संगतां नूं बड़े अदब अदाब नाल हाथ जोड़ के सारिया संगतां का तह दिलों बहुत बहुत धनवाद। दासरे दियां गुरमत विचारां करदियां होईयां भुल्लां दी खिमा करना जी। आओ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन शब्द दे अखीरले बोल फिर श्रवण करके उपरंत फतेह नाल सांझ पावांगे।

का नक्शे के बड़े विकार, तुम दाता दुख बंजना मेरी करो सुमार। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माय, आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाँ। ए बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े जैसे कागज जहाज का, अब सूजत और न ठोरे। परमपिता परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब जी के असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग उपलब्ध हुआ। मानुष जीवन का मूल उद्देश्य सत्संग में आने से ही पता चलता है। जब तक हम सत्संग श्रवण नहीं करते, हम अपने दैनिक कर्म को जो भी जैसा कर रहा होता है उसी को उत्तम मानते हैं, और जो पुण्यात्माएं परमात्मा की तड़फ में पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव से परमात्मा की चाह में इधर उधर भटक रहे हैं, उनको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। वे जहां भी गए, जिन संतों से मिले, उन संतों को एक परम संत मानकर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार किया और फिर पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को किया। लेकिन उन संतों के पास सत्संग नहीं था, कोरा कुसंग था। पुण्यात्माओं, जिन भक्तात्माओं को परमेश्वर कबीर जी का यथार्थ ज्ञान गहराई से समझ में आ चुका है, वे भक्त आत्माएं दास के इन वचनों को सहर्ष स्वीकार करते हैं और गदगद होते हैं। जो पुण्यात्माएं प्रथम बार आते हैं, एक दो बार आए हैं, उनको ये बताया जाता है कि उन संतों के पास जहां आप पहले जाते थे उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था, उनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं थी, जिस कारण से आपका भी और उन गुरुओं का भी मानव जीवन व्यर्थ हो रहा था। तो पुण्यात्मा महसूस करते हैं कि क्या किसी के पास भी सत्संग नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। परमेश्वर ने तो यहां तक कहा कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, केवल वो हंसात्माएं, वो पुण्यात्माएं जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार आकर मिले, केवल वही सत्संग से परिचित हुए और उन्होंने ही परमात्मा परमेश्वर जी का साक्षात्कार किया। फिर वो संख्या में बहुत कम थे, जिस कारण से इन अज्ञानी और अनाड़ी संतों ने उन महापुरुषों की अमरवाणी को जन साधारण तक नहीं जाने दिया, जिस कारण से आज तक हम अपने अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद करते रहे, व्यर्थ करते रहे, नष्ट करते। मानुष जीवन का मूल उद्देश्य सत्संग से ही पता चलता है, और सत्संग के अंदर यथार्थ ज्ञान दिया जाता है। जहां यथार्थ ज्ञान नहीं दिया जाता, वो भले ही सत्संग के रूप में भक्त श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, लेकिन वहां सत्संग ना होने से, वहां यथार्थ ज्ञान ना होने से वो सत्संग नहीं होता। अब मनुष्य जीवन, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे। ये मानुष जन्म आप जी का जिस भी कुल परिवार में है, जिस भी मजहब धर्म में है, ये मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन से हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, और यदि हम परमात्मा प्राप्ति
कि यथार्थ साधन से परिचित ना हुए एक दिन ये मनुष्य जीवन हमारा समाप्त होगा, और ये ऐसे होगा कि जैसे पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिर जाता है तो पुनः उसी स्थान पर उसी तरह स्थापित नहीं होता, फिर वो कहीं पशुओं के पैरों के नीचे कुचला जाता है या गंदे नाले में गिर के वो सड़ता है। ऐसे ही मानुष जन्म आपके हाथ से छूट गया तो पुनः शीघ्र प्राप्त नहीं होगा, फिर ये आप जी की आत्मा ना जाने कितनी गंदी योनियों में भटकेगी, कहीं कुत्ता गधा सुअर बनेगी, वहां नाना प्रकार की यातनाएं आप जी को भोगनी पड़ेगी। और यदि सतगुरु मिल जावे, सत्संग मिल जावे, तो फिर ये आपदाएं आप जी के जीव पर नहीं आएंगी। क्या बताया है, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, कबीर नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारू खान, कबीर चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओहो, अपने आत्मा सतगुरु ना मिलने से, एक तो आम संत सतगुरु नहीं होते, सतगुरु वही होते हैं जो सच्चा नाम सतनाम बताते हैं। गुरु सोए सतनाम बतावे और गुरु कुछ काम न आवे, गुरु सोए सतनाम बतावे, सतगुरु वही है जो सतनाम सच्चे नाम का ज्ञान कराता है, सतनाम देता है, सच्चा नाम देता है। सतनाम सतनाम ये कोई नाम नहीं है, सतनाम का अर्थ सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति विधि। और ओ जो सतनाम नहीं देते, सच्चा नाम जो दो अक्षर का होता है जिसमें एक ओम मंत्र होता है, एक गुप्त है, ये दासी बताएगा है उपदेशी को, ये दो मंत्र का सतनाम होता है। और जो गुरु सतनाम नहीं बता पाते और उनको अधिकार नहीं है बताने का, तो वो किसी काम नहीं आएंगे, वो व्यर्थ है। अब क्या बताते हैं कि मानुष जन्म मिला और सतगुरु नहीं मिले, ये नकली गुरु मिल गए, डुप्लीकेट संत, नाम धराम परम धनी और महामंडलेश्वर आचार्य 1008 पता नहीं के फीत लगावे सरस्वती फलाना, और उनको क्या कहेगा पता नहीं। तो ऐसे नकली संतों ऋषियों के अज्ञान से पुण्यात्मा अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। अब प्रसन्न रहा कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। पुण्यात्माओं, सतगुरु का बहुत महत्व है। गुरु, वैसे तो गुरु शब्द ही पर्याप्त है, लेकिन ये नकली गुरु हो जाने से सतगुरु कहना आवश्यक हो गया। सतगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे, सच्चा मार्गदर्शन करे, उसको सतगुरु कहते हैं। ये झूठे गुरु ज्यादा होने से सतगुरु का शब्द का प्रयोग करना पड़ा। ऐसे झूठे नाम बहुत लोग देते हैं, इसलिए सतनाम का सतनाम कहना पड़ा, सतनाम हो सच्चा नाम। गीता जी 10:8 के श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण और ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा एक ओम नाम है, एक अक्षर ओम है, और जो मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है जो इसको अंतिम श्वास तक ये प्रयाति तजंदेहम
शरीर छोड़ते समय तक जो इस ओम नाम का जाप करता है, सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम नाम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावृत्ति में हैं। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है कि उनमें गए हुए प्राणी भी, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी, साधक भी पुनः लौटकर संसार में आते हैं, यानी उनके भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। पुण्यात्माओं, वर्तमान में हम इतने भ्रमित हो गए कि जब तक हम प्रमाणों को प्रत्यक्ष नहीं देख लेंगे हम मान नहीं पाएंगे। ये देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मुन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये है जयदयाल गोविंद का, ये इनके हाथ से लिखा हुआ इसके बारे में जानकारी है। गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 दिखाते हैं आपको, अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, बस ओम, तो इसलिए इसको एक अक्षर बोलते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह ओम एक अक्षर है, उच्चारण करते हुए स्मरण करने का। और यह प्रयाति तजंदेहम, उच्चारण करता हुआ, प्रयाति तजंदेहम, उच्चारण करता हुआ, जिसका उच्चारण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका स्मरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। ठीक है, अब इन्होंने इसका अनुवाद यह किया है, यहां से शुरू किया है, ओम ये माने जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से मिलने वाली परम गति क्या है, ये देखिएगा, ये यहीं पर 8वां अध्याय 16वां मंत्र है। ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, यह देखना, पुनरावृत्ति का अर्थ है जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, ये पुनरावृत्ति, यानी वहां ब्रह्म लोक में, ब्रह्म लोक पर्यंत, ब्रह्म लोक तक भी जाकर के वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होता है। यहां इन्होंने इसका अनुवाद गलत किया है, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है, व्याख्या ठीक है। अब ये ब्रह्म बोल रहा है गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके, इसका अर्थ है आप ब्रह्म भोनाथ लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन माम उपेत तू मुझे प्राप्त होकर, ये इसका अर्थ है परंतु मुझे प्राप्त होकर तो कौनते पुनर्जन्म होते हैं, पुनर्जन्म होता है न विद्यते, जो ये नहीं जानते, विद्य माने जानना भी होता है, जो इस बात से परिचित नहीं है, तो वो मुझे प्राप्त होकर भी मेरा जो ओम नाम है इसका जाप करते हुए मुझको प्राप्त होकर, ये इन्होंने अनुवाद गलत किया है। यदि यहां ये कहता कि मुझे प्राप्त होकर, परंतु मुझे प्राप्त, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के, ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 तक, ये गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए,
अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5, यहां से ये यहां है। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे

0: गीता ज्ञान दाता के भी जन्म और मृत्यु होते हैं, तो ये कहना कि मेरे को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु नहीं होता तो वो अनुवाद गलत है, व्याख्या ठीक है। अब चौथे का नौवें में क्या लिखा है, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इसका सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता के जन्म तो होते हैं लेकिन वो दिव्य हैं, वो दास बताएगा बाद में समय आने पर। अब हम इतना ही लेंगे गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये ना सोच के हम अभी हैं, पहले नहीं थे। अध्याय नंबर 2 और ये श्लोक मंत्र नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इति सिद्धम के गीता ज्ञान दाता का जन्म मृत्यु होता है। और यहां देखो 17वें श्लोक में दूसरे अध्याय के अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17 गीता ज्ञान दाता कहता है, नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दर्श वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहां ये अर्थ गलत किया है, इसे सिद्ध गीता ज्ञान दाता स्वयं भी नाशवान है। यह देखिए गीता अध्याय नंबर 8 के अब श्लोक नंबर 16 को पुनः पढ़ेंगे जब बात समझ पाओगी। हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ओम नाम का जाप प्राप्त करके जो ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती में है, जिन वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होता है, 84 लाख योनियों में भटकते हैं। और ये कहना कि परंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है, ये व्याख्या ठीक है। तू मन परंतु माम उपेत मुझे प्राप्त होकर भी कुंती पुत्र पुनर्जन्म होता है, क्योंकि न विदते जो नहीं जानते, विद्य माने जानना भी होता है, जो इस बात से परिचित नहीं है, जिनको ये ज्ञान नहीं है तो वो मुझे प्राप्त भी होते हैं, उनका जन्म मृत्यु भी होता है। गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत वो होता है जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष को अर्थात पूरे ब्रह्मंडों की जानकारी देवे, उस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के विभागों को, तना क्या है, डार क्या है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, कौन भगवान है, यानी उनके विभाग करे, विधिवत बताता है, वह तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार से सत भक्ति करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह की जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड का पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th Street साउथ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
4: पवित्र श्रीमद भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
0: जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी वो गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है, उसके लिए 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन ओम तत् सत इति निर्देशय ब्रह्मणे त्रिविध समर्थः। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी उस पूर्ण परमात्मा का जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उस परमात्मा, उस परम अक्षर ब्रह्म, सचिदानंद घन ब्रह्म कहो चाहे उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, उस सचिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म के पाने का केवल एक ओम तत् सत ये तीन मंत्र का जाप है। इसी के जपने का निर्देश है, नथिंग एल्स। और इसकी तीन विधि है, तीन प्रकार से सिमरण होता है। वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा इस तीन मंत्र के जाप को। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है गीता ज्ञान दाता ने कि जो व्यक्ति, जो साधक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान पर आश्रित हो जाता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो फिर उस तत्वब्रह्म से और सारे दातुम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, फिर वो व्यक्ति जरा और मरण से छुटकारा पाने का ही यत्न करता है, फिर ये इस संसार की कुछ भी वस्तु डिमांड नहीं करता। वो फिर जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था, यानी सबसे खतरनाक दुख है इस प्राणी पे, और फिर मृत्यु।

से बने हुए हैं, पांच तत्व से बने हैं, और वहां एक नूरी तेज तत्व से बना हुआ शरीर है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, वो किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके बारे में आपने 7वें अध्याय 29वें श्लोक में कहा है। तो उसके विषय में 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29 दिखाते हैं, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये, मेरे आश्रित होकर जो जरा और मरण के मोक्ष यानी छुटकारे के लिए ही यतंती प्रयत्न करते हैं, वे ते ब्रह्म तत्विदु, वे तत्ब्रह्म, ब्रह्म तत् कहो चाहे तत्ब्रह्म को, उस तत्ब्रह्म को जानते हैं, और कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम, अखिलम माने सारे कर्म को, कर्मों से परिचित हैं और सारे अध्यात्म से वो परिचित हैं, जो उस तत्ब्रह्म से भी परिचित हैं जो केवल जरा और मरण के छुटकारे के लिए ही साधना करते हैं, यहां कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं रखते परमात्मा के सामने, वो समझ चुके हैं। कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खर बया बोरे कौआ हंस बुगारे, कहते वो समझ चुके हैं। यह अनुवाद है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का इन्हीं के द्वारा। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण, जरा मन वृद्ध अवस्था बुढ़ापा छुटने के लिए यत्न करते हैं, वे व्यक्ति तत् माने उस ब्रह्म माने ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, वे तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। और 30 में क्या, ये 30 अंतिम है 7वें अध्याय का। जो पुरुष अधिभूतम और अधिदेव, अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझ को अंत काल में भी जानते हैं, वे व्यक्ति युक्त चित वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, वो केवल मेरे तक ही सीमित हैं। या खत्म हो गए, ये 7वां अध्याय यहां समाप्त हो गया। अब ये 8वां यहां शुरू होता है। 8वां अध्याय इसमें प्रथम मंत्र में ही अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते, हे पुरुषोत्तम तत्ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। इसका उत्तर दिया है इस 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञानदाता ने बताया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। इसे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा अन्य भगवान है, जिसके जानने से, जिसकी साधना करने से, और उसका ओम तत् सत, ये 3 मंत्र है। ओम तो सीधा ही है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा। ओम तत् सत ये कोई मंत्र नहीं है, ये अनाड़ी और ये डुप्लीकेट संत ओम तत् सत हरि ओम तत् सत इस तरह बढ़ा रहे हैं, आपको मूर्ख बना रहे, ये मंत्र नहीं है। अब इसमें 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में आपको स्पष्ट हुआ कि वो परम अक्षर ब्रह्म। अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और ये परम अक्षर ब्रह्म अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी है, और वहां उसके सतलोक सचखंड शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, जरा मरण समाप्त हो जाता है, वहां सदा युवा रहते हैं, सतलोक के अंदर वृद्ध अवस्था नहीं आती, सदा युवा रहते हैं और मृत्यु कभी नहीं होती।

जरा और मरण वहां जाकर मिटता है। अब यहां दो भगवान चलते हैं, दो प्रभु, दो स्वामी। ब्रह्म तो केवल किस ब्रह्मांड का स्वामी है, स्वामी है, भगवान है, प्रभु है, और ये परम अक्षर ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांड का, असंख्य बिना गिनती के, यानी ओवरऑल कंट्रोलर है। अब ये ब्रह्म कहता है मेरा ओम नाम है, आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरी भक्ति करोगे तो मेरे पास रहोगा, और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना करोगे तो उसके पास चले जाओगे। वहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। गीता के अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 5 से लेकर 10 तक कति निर्णायक ज्ञान है। 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति कर, तू युद्ध भी कर, मेरे पास रहेगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्मलोक को मिल जाएगा, मेरे ओम नाम से मिलने वाली जो गति है वो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मेरे और तेरे जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 तीन श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी दी कि उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर आपको आपने 3 देख लिया, 3 तो भी देख लिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म। अब यहां आ जाते हैं इसी पृष्ठ पे, ये 5वां श्लोक है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ श्री त्याग कर जाता, यानी ओम नाम का जाप करता हुआ जो स्मरण करके जाता है, तो वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है। यहां मेरे साक्षात स्वरूप को नहीं, ये अनुवाद गलत किया है, मद भावम याति, वो मेरे में भावित रहता है, मेरे पर उसकी श्रद्धा बनी रहती है, तो इसमें कोई संशय नहीं। आगे देखना, अब छठे में इसका, छठे में भाव का क्लियर होगी। हे कुंती पुत्र, अंत काल में, यानी यहां निर्णय दिया है कि अंत काल में जो जिस भी इष्ट की पूजा करता हुआ जाता है उसी के भाव में भावित रहता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, यानी उसी उस भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा तद भाव भावती भावित, वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। यहां यही है कि जैसे जो मेरा स्मरण करता है वो मुझ में भावित रहता है, मुझ में, यहां इसने मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, गलत किया है 5वें में कि जो पुरुष अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे, यहां मेरे साक्षात रूप को नहीं, वो मेरे भाव में भावित रहता है, मेरे में ही उसकी श्रद्धा बनी रहती, इतना लिखना है, इसमें संशय नहीं है। छठे में इस भाव को क्लियर कर दिया है कि जो एक नियम है कि जो भी अंत समय में, यानी जो सारा जीवन जिसकी भावना भावित रहेगा अंत में भी उसी में भाव रहेगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है, क्योंकि उसमें उसकी श्रद्धा रहती है, यानी ब्रह्म की साधना करता है तो ब्रह्म को प्राप्त होता है, और परम अक्षर ब्रह्म की करता है तो उसको, जो उसकी साधना करता है उसमें भावित रहता है। अब 5वें में कहा मेरी मसलदा करता मुझ में भावित रहता है, और 7वें में कहा है कि इसलिए सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। आगे देखना है, यदि यहां तक इसकी चैप्टर खत्म हो गया ब्रह्म गीता ज्ञानदाता का, ब्रह्म का। और 8वें में कहा है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतन। क्या बताता है गीता ज्ञानदाता कि हे पार्थ, यह नियम है कि
परमेश्वर के उस परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के ध्यान नहीं, अभ्यास योग युक्तेन। हम संस्कृत भी पढ़ेंगे तभी निर्णय होगा। अभ्यास योग युक्तेन यानी जो सतगुरु ने सच्चे गुरु ने जो मंत्र अभ्यास का दिया है नाम का, उसका अभ्यास करते हुए दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से यानी किसी और में आस्था ना रखे, निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुषम, पुरुष माने परमेश्वर भगवान प्रभु, और परम दिव्य उस अद्भुत, दिव्य माने अनोखा अद्भुत यानी परम अक्षर ब्रह्म, यहां समझो इस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि वह परम पुरुषम, वह परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। वो परम दिव्यम पुरुष, परम अक्षर पुरुष, ये परम ये समझ लो, वो परम अक्षर ब्रह्म, पुरुष माने ब्रह्म कहो परमात्मा कहो कुछ भी कहो, पुरुष माने परमात्मा। और मनुष्य को पुरुष इसलिए कहते हैं परमात्मा मनुष्य जैसा ही है, इसलिए मनुष्य को अपना स्वरूप उसने दिया है तो वो मनुष्य को भी पुरुष कहने लगे। परमम दिव्यम पुरुषम याति, वह परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम दिव्यम पुरुष कहो या परम दिव्य परमेश्वर कहो, को प्राप्त होता है। अब नौमे में यहां लिखा कव्यम पुराणम अनुशासिताराम अणो अनिशासम अनुसमरेत ये सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण माने सूर्य की जैसे, सूर्य की तरह साकार चम तेजो में तमस्य प्रस्तात, इस अज्ञान रूपी अंधकार से बिल्कुल परे जो कोई नहीं जानता उसको परमात्मा ही आकर बताते अपने दिव्य बारे में। जो पुरुष, अब यहां इसको ज्यादा डिफाइन ना करें तो यह ठीक रहेगा, क्योंकि यहां कव्यम शब्द का अर्थ कुछ और बनेगा, फिर भी हम आपको प्राथमिक ज्ञान में इसको यही ऐसे ही लेंगे तब आपके समझ में आएगी। जो पुरुष सर्वज्ञ, वैसे कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता, इसका अर्थ सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, यहां पर सीधा अर्थ बनता है वो कबीर देव। जो कबीर देव है वो अनादि है, सबका नियंता है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, सबके धारण पोषण करने वाला है और अचिंत स्वरूप है, और सूर्य के सदृश नित चेतन स्वरूप है यानी सूर्य की तरह साकार तेजो में शरीर युक्त है, अविद्या से अति परे सचिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है। देखो जो व्यक्ति उस अनादि पुरुष परमात्मा जो सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत रूप है, सूर्य की सदृश साकार चेतन है, सूर्य सदृश है तेजो में शरीर युक्त है, अविद्या से अति परे है सचिदानंद, उस परमात्मा का श्रवण करता है। अब दसवें में आठ नौ दस उसी परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये दसवां श्लोक। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से यानी भक्ति, योग बल माने साधना की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, मंत्र के बल से, बैरकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, क्योंकि सांस का सिमरण होता है और सांस के सिमरण से जीव ऊपर चलेगा, और फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्यम परम पुरुषम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, यह परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, जो दास आपको इस सत्संग आज का समझाना चाह रहा है, अभी तक तो इसकी भूमिका बन रही है, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी, कबीर चार खानी में भरमता कभू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। अब एक बहुत ही
अजीब और गरीब उदाहरण है जो आसानी से हमारे हृदय में समा जाएगा। लेकिन पुण्यात्माओं, ये तो एक विद्यालय है, ये वो विद्यालय है जो आपको परमात्मा प्राप्ति कराओगा, ये वो कॉलेज है, ये वो यूनिवर्सिटी है जो आपको परमात्मा प्राप्ति कराओगा। और जब तक विद्यार्थी कॉलेज विद्यालय में जाता है तो उसने अपना चैप्टर, अपना सब्जेक्ट रह रहकर उसका रिमाइंड करना पड़ता है और तभी वो सफल होता है। तो जब तक आप यहां हो इस पृथ्वी लोक पर, तब तक अंतिम श्वास तक आप जी को सिमरण भी करना है, स्मरण करना है, जो मंत्र आपको दिया जाता है, और साथ में ये स्वाध्याय और ये ज्ञान, ये भी आपने श्रवण करते रहना होगा। ये एक नियम है, इसको बार बार करना पड़ेगा। जैसे हम रोटी रोज खाते हैं, अंतिम सांस तक ही रोटी खानी पड़ेगी जब तक शरीर छूटेगा। और जिस दिन रोटी अच्छी नहीं लगती है, सुबह खाई है और शाम को अच्छी नहीं लग रही है, तो समझ लो आप शरीर में आप जी के कोई गड़बड़ होगी। तो उसका ट्रीटमेंट है कि ना चाहते हुए भी गोलियां खानी पड़ा करें। जैसे गेहूं की रोटी वही होती है, सुबह भी शाम भी, सब्जी का फेरबदल थोड़ा बहुत हो सकता है। और सही भूख जिसको लगी है, सब शरीर है, सब्जी हो ना हो, रोटी मिल जाए, लुखी सुखी भी खा जाए मिर्च के साथ में। तो ऐसे जब तक आपकी भक्ति सही चल रही है, आपके ऊपर कोई पापक्रम का दबाव नहीं बना है या आपका नाम खंड नहीं है, तो आपको ये वचन ऐसे नहीं लगेंगे कि ये तो पहले भी सुना था। और ऐसा आता है तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ आपकी आत्मा में हो चुकी है। तो उसको सेट यही, उसका अर्थ यही है, उसका ट्रीटमेंट यही है, ना चाहते भी सुने। जैसे बुखार हो जाता, किसी को जबर हो गया और जबर होने से भूख ना लगती, भूख तो लगती है कोई ना, रोटी तो अच्छी कड़वी लगन लगी, लेकिन कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार आप जिन ये सत्संग जितनी बार भी सुनो, आनंद आना चाहिए, क्योंकि भगवान की चर्चा इस पृथ्वी पर ढूंढ ही नहीं पावे। कहीं और सत्संग सुनते हो तो सत्संग नहीं है, बेशक चर्चा मालिक का नाम जोर से लेते हैं, लेकिन वहां सारा अज्ञान प्रवेश किया जाता है। तो यह और न्यारी खुशी। तो अंतिम श्वास तक जैसे शरीर को अन्न की आवश्यकता होती है, रोटियों की आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता है, ऐसे ही आत्मा को अंतिम श्वास तक ही सत्संग की भी आवश्यकता और सिमरण की आवश्यकता है। तो हम जो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जैसे ऋषि महर्षि जी साधनाएं करते थे और ऐसी कठिन साधनाएं उन्होंने की, ऐसे प्रयत्न किए, इतनी जबरदस्त तरीके से किया, ओम नाम का जाप भी करते थे, पहले मंत्र ही एक होता था। ये तो कलयुग में बात बिगाड़ दी नकलियों ने, पहले एक ही मंत्र होता था ओम नाम, वेदों अनुसार साधना करते थे ये लोग, क्योंकि इन्होंने वेदों को स्वयं ही जाना, संत नहीं मिला इनको, तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिस कारण से इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखे हुए ओम के मंत्र को पूर्ण परमात्मा का जान लिया। उसमें लिखा है कि ओम कर्तु समर किल्वे समर कर्तुम समर, अंतिम श्वास तक भस्मांतम शरीरम, शरीर छूटने तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, अपना दैनिक क्रिया करते हुए, जिसका भी जैसा व्यवसाय उसमें ही, यानी घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं किसी जंगल में, काम करते करते सिमरण कर विशेष कसक के साथ, हृदय मनु गुदगुदी सी उठे भगवान के भजन के लिए, एक उमंग सी उठे कसक के साथ, और मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर इसको प्राथमिकता दे, एक नंबर पे लावे भक्ति वाले काम ने। अब हमने रोजगार वाला काम तो एक नंबर पर कर रखे, 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम करते हैं, और परमात्मा वाला हमने गेर रखा, टाइम लग गया तो कभी मंदिर में चले जाया करते, मंगलवार ने प्रसाद बांट दिया,
कोई व्रत रख लेते, ओम जय जगदीश हरि आरती याद आ जाती तो वह गुणगुना लेते। तो हम ऐसा काम चलाओ सा इसको समझ रहे थे, रिजेक्टेड सा नहीं। अब इसको एक नंबर पर लाना अपन, फिर संसारी काम भी ठीक होंगे। तो ऐसे उन लोगों ने जिन्होंने स्वयं ही वेदों को जाना और समझा, सतगुरु मिले नहीं, उन्होंने ओम नाम के जाप को अंतिम मान लिया। और जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, सर्वप्रथम जब इनको होश में लाया गया इस काल भगवान ब्रह्म के द्वारा, तो ये कमल के फूल पर बैठा था जब आकाशवाणी की इस ज्योति निरंजन ने अर्थात इस ब्रह्म ने सर्वपुरुष ने कहा कि तप करो तप करो। ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। तो बाद में वेद मिले इनको, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जब इन्होंने सागर मंथन किया तो वेदों में तो ओम नाम और आकाशवाणी मान ली परमात्मा की, ब्रह्मा जी ने कि परमात्मा ने आकाशवाणी की थी तप करो, तो उधर से तो आकाशवाणी से तो ले लिया तप, वो आकाशवाणी तो थी काल की ब्रह्म की। और वेदों का ज्ञान दिया परम अक्षर ब्रह्म ने, इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इसके कंप्यूटर में फीड कर दिया, इसके मोबाइल में फीड कर दिया, फैक्स कर दिया, और वो ही बाहर इसने निकाल दिया एज इट इज। और उधर से इसने अपने अटकल के और अलग प्रकार के कई उपनिषद आदि गढ़वा दिए और आकाशवाणी इसने अपना ज्ञान ठोक दिया। तो इन ब्रह्मा जी के बाद ही सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से ज्ञान ग्रहण किया। तो ओम नाम तो वेदों से और आकाशवाणी वाली वो तप, इन दोनों का खिचड़ी बना ली इन्होंने। तप भी हठ योग भी करने लायक गए, जबकि वेदों और गीता जी में हठ योग को मना किया है। ओनली मंत्र जाप करना, नाम जाप करना, काम करते करते, जैसे आपने अभी 8वें जाके 7वें श्लोक में पढ़ा, ये ब्रह्म कहता है कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण कर ओम नाम का। युद्ध से कठिन कोई काम नहीं होता, और उसमें भी भगवान को याद रखना बताया। तो काम करते करते हठ योग नहीं, किसी उसमें लिखा है शास्त्र में, तो हठ योग इस काल ने अलग से ठोक दिया। तो इन ऋषि महर्षियों ने हठ योग साथ में किया, ओम नाम का जाप किया, जिस कारण से ये काल के जाल में ही फंसे रहे, जन्म और मृत्यु के चक्कर में ये फंसे रहे, ये पार नहीं हो सके, इनकी दुर्गति ज्यों की तो बनी रही।

आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: कैलगरी इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश किते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दी सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एचएमपी कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। एचएमपी कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: ओ मेरा मस्त मलंग साईं मस्त मंग मेरा मस्त मलंग साईं मस्त।

0: प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लैण लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: कैलगरी इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।
1: हम डडी हर प्र

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ फीस्ट कैलगरी।
2: जपियो जिन अर जन देव गुरु

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: गुर अर्जुन पिखो ने

0: कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
1: जाग सलोने

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जोहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जोहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near Stampede

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाज स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130-4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 या विजिट करो डब्ल्यू

पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सग जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म हदू करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर।

दर्शन प्यासी दिन सुरात चितवो अन दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया हाँ नानक

हम अवगुण भरे, एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखाई। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखो सुनाई।

0: જીવન મુકતસ વાકીએ માર જીવે મરિયા જન નાનક સતગુર મેલ હર જગ દુખર તરિયા
1: સલોક મહલા પહેલા सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबार सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा खै लख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यायन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला
0: वड़ी वड़ियाई जा वड़ा नाऊ वड़ी वड़ियाई जा सच ने आऊ वड़ी वड़ियाई जा ने चल थाऊ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਿਆ ਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੈਸ ਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾਤ

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जल विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद वेजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सुख।

0: जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
1: थोड़ी अपने पोख पोख के बस मन बहुत सिधाया बड़ा हुआ तूने दल दर संदल कब चलाया आगे करनी की रतवाची है पहले खाकर समझाया।

0: विचार सुन कर प्रगटा सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह छुड़ाया। उत्तम में विचार जिन सच्चे सिउ जगलाया। जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया।
1: कर कृपा वसो मेरे हृदय होय सहा।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार।

यह मीठी जियमाहे हिताने बाल बंच छप कर तो पावा देखत सुनत प्रव अंतर जामी शील धर्म दया सुच नासत आयो शरण जी के दानी कारण कारण समरथ श्री धर।

आकाश नामावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर परयो है दह दिस ताए महाबिखिया को पर तन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूत।

0: हर दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिन सजाहे हर नाम उच्चारी। इशनान दान पापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रबतारी। साजन मीत सखा हर बंद जीतान प्रभ प्राण अधारी। ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी।
1: आवधि कट्यो ना जातो प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग। पावक जर्यो ना जात रहो जन तूरे लग। नीर ना साक्ष बोर चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह सिदे हरि नाम खग।
2: उद्दम कर लगे बोह पाती बिचरे अनक शास्त्र बोह खटुआ। पूजा चक्र करत पसम लगाए तीरथ बोह परमते। सूखम देह बंधे बो जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत। जो प्रेम

अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत

जिस मनुख पह करौं बेनती, सो अपने दुख परिया। और ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, तिने पौ सागर तरिया।

सिमरत नाम कोटि उजियारा बसत अगोचर सूजे फिरत फिरत तुमरा द्वार आया पंजन हर राया साध के चरण तोर जन बांछ सुख नानक एह पाया फिरत फिरत तुमरा द्वार आया पंजन हर राया साध के चरण तोर जन बांछ सुख नानक एह पाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुजरी महला पंजवा जिस मानुख पह करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन भाव सागर तरिया।

नील बस्तर ले कपड़े पैरे तुरक पठानी अमल किया चारे वेद हो सचार पड़े गुणे तुम चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु बेटो वारिया जित मिले ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਤਾ।

0: ना ही करते रह सच नाम मेरा सच नाम आधार मेरा जन पुखा सब गवाइया
1: शांत सुख मनवाए बस आज ने चा सब जाया
0: सदा कुर्बानक ता गुर विट्टों जिस दियां पटियां आईया कहलन को
1: सुनो संत।

अणसुनो बट पाप क्यों सकल मनोरथ पूरे दुख रोग संता पुत्र सुनी सच्ची बाणी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहे पर पूरे।

पुस्तक संध्या बादं सिलपुच बगल समाधं मुचुड़ विभूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक ललाटं दो तोती बसर कपाटं जे जानस ब्रह्मं करमं सा फोकट निश्चो करमं कौ नानक निश्चो त्यावे वे सतगुर वाट न पावे पौड़ी।

0: मनंधानां सुजान पड़ी साहेब दया कृपा करिता साई कर कराई सी सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाई सी हुकम ने हवे प्रवान ता किसमें ता मैल पाई सी किसम पवे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाई सी ता दर जाए पैंदा जाए सी पैंदा जाए सी पैंदा जाए सी
1: ਸੋ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਦਰ ਗਏ।

जे महा का कर्म है कर्म है पितरी दे अगे वस जानी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुसफी करे नानक गैसो मिले जे खटे काले दे महला पहला जो जो

0: नितन धोए खुआर सूचे न आखिए बैंज पिंड तो सूचे से नानका जिन मन बसिया सो पड़ी तुर फलाने कौन भी हर रंगी अरम सवार कुटी मंड माड़िया लाए बैठे हर पा सारे चीज करम पाम दे हर पुजन हारे कपरमाइस पाया विख महलत मरण सारे जरे आए जो बन हारे जो बन हारे जो बन हारे
1: ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੈਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤ ਮਰਨ ਵਿਚ ਹਾਰਿਆ ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ।

द्रवाट पर खर्च मंगा जब देता खाए दीबाने को कलम का हमा तुमा में दर ले लिखा पिट छुटे नान का जो तेल थोड़ी अपनी कड़क।

0: जे लेखै वरतै सो महला दूजा।
1: सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुथा जाए, नानक दोवें कुड़िया हाय नकाई पाए पड़ जित्रस पाई।

0: लगे चाकर जे चले कसमें पाए और मतिस नकली बजो बिधुना खाए कसमें करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजो गवाए अगला मुंह मुंह पाना खाए जिसदा दिता खावना तिसके ये सवास नानक हुकुम न चले नाल कसम चले अरदास
1: जरा अंतर गौर।

0: खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
1: बड़ी बड़ी की बड़े या किस किरण कह न जाए सोकरता का दर करीम दे जिल जग संभाए साई कार कमा अपनी त्रिजोटी जिने पाए नानक एक की बारी हुर दूजी नहीं जाए सोकर जित सर जाए सोकर जित सर जाए सुजाए।

0: नाम वृथा दुख काटा। प्रभु ताज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस काटा। रहा माया के संबंध सेन साक, कित ही काम न आया। हर का दास नीच कुल ऊंचा, तिस संग मन बांछत फल पाया। लाख कोट बिखिया के भिंजना, ताम है त्रिसन ना भूजे। सिमरत नाम कोट उजियारा, बसत अगोचर सूजे। फिरत फिरत तुमरा द्वार आया, पै जन हर राया। साद के चरण तोर जन बांछ, सुख नानक हो पाया। फिरत फिरत तुमरा द्वार आया, पै पंजन हर राया। साद के चरण तोर जन बांछ, सुख नानक हो पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। गुजरी महला पंजवा, जिस मानुख पह कराऊं बेनती, सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या। तिन पाओ सागर तरिया,
1: कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM। धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सानू समझा रहे ने, तैनू सारियां गल्लां भुल जान विसर जान, पर ऐ गुरसिख ख्याल रखी एक रब दा नाम ना भुलाई। दादा जी सोझी दे रहे, सारा कुछ तैनू भुल जाए विसर जाए, रब दा नाम ना तैनू विसरे। बस जदों तू रब नू भुला देंदा ऐ ना, ते तेरे ते दुखां दे पहाड़ टुट पैंदे ने। पर

सतगुरां दे चरणां विच दो भरा बैठे जोदड़ी पै करदे ने। सूरज प्रकाश दे बोल, इक पैड़ा फुल दुर्गा आयो, श्री अर्जन को सीस नवायो। पैड़ा ते दुर्गा दो भरा गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं बिने करदे ने, महाराज साढ़े घर विच हर वेले कलेश। बच्चे बोल कबोल बोलते, सारा दिन असी मेहनत मजदूरी करते हाँ ता भी पूरी नहीं पैंदी। सुनिया है जेड़ा तुहाडे घर आंदा ए सुखां नाल झोली भर जांदी। गुरु अर्जन देव महाराज पुछदे ने, क्यों बई सिमरन करदे हुंदे हो, उस रब नूं याद करदे हुंदे हो, दसां नौहां दी नेक कमाई करके दसवंध कढदे हो। कहण लगे महाराज, संगत विच असों कित्थों जाना है, काम तो ही टाइम नहीं लगता। जेड़े पैसे कमांदे हां घर दा गुजारा ही नहीं चलदा, ते दसवंद कित्थों कढ़ना है। महाराज कहण लगे, ताइयों फिर गुजारा नहीं चलदा। हां बई,

महाराज सोजी दे रहे। हर वेले उस रब नू याद रखिए, नेक कमाई करके जिथे अपने बच्चियां दे मुख पाइए, गरीब गुरबे दे मुंह विच भी पाइए। रब याद रहे ते सुख बने रहते। पैड़े ते दुर्गे ने सतगुरां दे बचन पल्ले नाल बन ले। अपने घर आए, घरवाली नू बच्चियां नू बठा ले, सारी गल सुनाई। इंज महाराज जी ने सुखां दा राह दस्या है। प्यारियो, ये सतगुरां दे बचना ते चलन लग पए ने। जिथे भी संगत हुंदी सारा परिवार जाता है, हथी भी सेवा करते ने। थोड़ी कणी जेड़ी कमाई करते ने ना, दसवंध भी काढ लैंदे। गुरु इन्हां दे चित वस गया, अज होर कल होर, सुख वधणे शुरू हो गए। बाबा नंद सिंह जी सोझी देंदे सन कई बार ना, ओ निरंकार झोलियां भरन तो पहला भांडिया नू टणका के भी देख लैंदा है। ये भांडा पक्का है कि एवें दातां दा ही भुखा गुरुद्वारे गेड़े मारदा है। गुरु टणका भी लैंदा है। आ एक दिन पिंड दे विच बहुत सारी संगत आ गई। ये संगत अमृतसर चली है गुरु अर्जन देव महाराज जी दे दर्शन करन वास्ते। ते पिंड वालिआं नूं पता ही हुंदा है ज्यादी सेवा कौन करदा है। पिंड वाले कट्ठे होए ते पैड़े ते दुर्गे दा जा दरवाजा खड़काया, भई संगत आई है, असां सोचिआ तुहानूं बहुत चा रहिंदा है सेवा दा, अज शाम दा लंगर तुहाडे वल्लों ही रख दिता है। सत वचन कह के सेवा झोली विच पवा ली। हुण दोनों भरा बेड़े दे विच बैठे सोचदे ने, असां ते कदे आप ना रज के खाधा, एनी संगत नूं शाम तक कित्थों लंगर।

गरीबी आ जाए ते कोई उधार भी देण वास्ते तैयार नहीं। दोनों भरा पैड़ा ते दुर्गा डूंघियां सोचां विच डुबे बैठे नहीं।

गुर की पैरी पाए। सारिया सियाणपां ते अकलां छड के गुरु दे चरणा विच ढेरी हो। जदों तेरा मुख गुरु वल रहिंदा है ते सुख तेरे मगर मगर तुरे फिरदे। महापुरशो जी देंदे सन।

तेरे कोलों करवा लेंगे प्यारियो। अताइयों ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बाणी विच सानू एक असीस पै देते हैं।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन दे मनिंदर सिंह तिलोहरन दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street North East कैलगरी

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता, तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के ब्याह शादी के प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करने की जानकारी लेने लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी।

तू मेरा साहिब मैं तेरा चेला बन जांगा खालसा, पर शर्त है रहनी विच आ जा, रहत विच आ जा। जागत जोत जपै निस्वासर, एक बिना मन नैक न अन्ने, पूर्ण प्रेम प्रति सजै ब्रत गौर, मड़ी मठ भूल ना मन्ने। माड़े जे दुखां करके मड़ियों ते मत्था ना टेकन लग जाए कर, माड़े जे दुख करके कबरां वल ना भजे कर। खालसा तेरा अकीदा विश्वास गुरु गोविंद साहिब महाराज ते होना चाहिए, ताइयों रहरास विच पक्का शब्द शामिल कीता है। तू अंदरों विश्वास नाल कह पाए गए, जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं अन्नी। राम रहीम पुरान पुरान अनेक कहे, मत एक न मन्यो, सिमरत शास्त्र वे सब वो भेद कहे, हम एक न जन। एक नुक्ता ध्यान नाल सुनियो, ऐदां दा गुरु ना किसे दा होया ना किसे दा हो सकता है। जिदां दा सानू दसम पिता गुरु गोविंद साहिब महाराज मिले, ऐदां दा गुरु दुनिया दे विच खोज के वेखो, किसे नू ऐदां दा गुरु नहीं मिलिया। एक गल कल्ली आपां नहीं कहिंदे, एक मुसलमान कवि ने एक गल, जिहड़ा पंज वक्त दा पक्का निवाजी है, ईमान दा पक्का मुसलमान है, उन्हें दो किताबां इतिहास ते लिखियां ने गुरु गोविंद साहिब महाराज दे। एक किताब का नाम उन्हें गंजे शहीदां रखे है, एक किताब का नाम उन्हें शहीदा ने वफा लिख रखे है। उहदे विच उन्हें एक गल कही, ओ दुनिया दे लोको, मैं खुद पंज वक्त दा नवाजी पक्का मुसलमान है, पर एक गल सच है, जिन्ना प्यार गुरु गोबिंद सिंह अपने सिखा नू करदा है, इन्ना प्यार दुनिया का कोई पीर अपने मुरीद नू नहीं कर सकता। सब तो वध जे किसी ने सिखी वे सिख नू प्यार कीता है, ओ मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कीता है। ओ लिख ले, हाशा किसी मुर्शद में ऐसा असयार नहीं है, किसी पीर में ऐसा जनहार नहीं है। पता क्यों? जेड़ा अमृत सिखा नू छकाया, ओ अमृत गुरु गोविंद सिंह महाराज ने आप भी छकाया। जेड़ी रहत सिखा नू दित्ती, ओ आप भी रखी। जेड़े ककार सिखा नू पहनाए, ओ आप भी पहने। जेड़ी गल सिखा नू मनवाई, ओ गुरु ने आप भी मनी है। नहीं तो गुरु कईयां दे होणगे निंदिया कोई नहीं, माफ करियो, चेले होर तरह दे ने, गुरु होर तरह दे। ओ गुरु ना चेले नू अपने वर्गा बनाउंदा है, ना चेले नू अपनी जगह दिंदा है, ते साथ संगत अपने आप नू बाहरी तौर ते गुरु अखवाई जान, पर ओ चेलिया नू इन्ना प्यार दे अपने बराबर नहीं कर सके। मेरे गुरु ने जिद्दां दा रूप सिखां नू दिता, आप भी ओही उतारन। कल्ली रहत तक इथों तक नहीं, रहत तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रखी है। सुनियो इतिहास विच इक सतर आउंदी है, जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जांदियां जांदियां सिखियां दी प्रीख्या करदे, खालसा अखवाई जाने बन भी गया कि नहीं बनिया। अज पातशाह ने एक परख पाई, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जांदियां जांदियां पीर दादू की समाध नूं तीर नाल मत्था टेका, बस पीर नाल सिर झुकाउण दी देर सी, खालसियां च चर्चा चल पई, महाराज सानू कहिंदे ओ गौर मड़ी मठ भूल ना मन्ने, आप तुसीं इक गौर नूं कबर नूं सजदा क्यों कीता? जे रहत साडे वाली, अमृत साडे वाला, सब कुछ साडे वाला है, पातशाह तुहाडे ते वी लागू हुंदा है। बलिहार गुरु गोविंद सिंह महाराज तो वह तो जान के पातशाह ने परख पाई, हजूर ने अपने तन तो गतरे समेत 3 फुट की कृपान लाई, ते श्री साहब कृपान लग के पंथ नू पेश करके कहा, दया सिंह गुरु गोबिंद सिंह भी तनखाइया होया, मैनू तनखा ला। किसी सिख की की हिम्मत सी तनखा ला दे? अखां भर गई, हाथ जोड़ गया, नहीं पातशाह असी तो उंज पुछे। सतगुरां कहा, नहीं दया सिंह मैं भी तनखाइया होया, मैनू तनखा लाओ। पातशाह ने कृपान श्री साहब उतार के गात्रे समेत पंथ नूं देती, 5 सिख बह गए तनखा लाउण। जदों पंजां ने आपस विच विचार करके तनखा लाई, दसम पातशाह नूं तनखा लाई, 25 रजतपण कड़ा प्रसादी देग भेंट करो पंथ नूं। कलगीधर पातशाह ने 25 रजतपण कड़ा प्रसादी देग पंथ अगे भेंट कीती, अरदास होई, फिर पंजां ने वापस श्री साहब जदों देना सी उदों ओह तनखा लाउण लग्गे, कहा सुनावे कौन गुरु नूं? पंजां प्यारियां विचों प्यारे दया सिंह नूं कहा, तुसीं सुनाओ। उन्हां कहा, नहीं मेरी जबान तो तनखा नहीं सुनाई जाती। पता क्यों? मैं अखां नालों सब कुछ वेख्या, जिन्ना प्यार खालसे नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कीता है, इन्ना प्यार दुनिया का कोई गुरु नहीं कर सकिया। मैं हाथ जोड़ जोड़ कहिंदा रहा, दसम पातशाह तेरे पुत्तां दीआं लाशां बिना कफन तो पईआं ने, मैं दुमाला खोल के दिना पुत्रां दा मूंह ढक जाओ। दसम पातशाह ने अपने पुत्तां दा मूंह नहीं ढकिया कपड़ा पाके। इन्नी गल कही दया सिंह, मैं अपने पुत्तां तो प्यारे सिख छड के पुत्रां ते कपड़ा किवें पादा?
ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਪੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਹਿ, ਦੁਨੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਦੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਾਗ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਹਿ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਕਫਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਕਫਨ।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700, 403-439-7700।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो Bobby Dodd @403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, Northeast Calgary।

0: कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सर्वन करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, गुजरी महला पंजवां।

ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜੋ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 497 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰੋਵਾਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੈ ਘਰ ਆਇਆ, ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੈ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਰੋਵੈ ਦਹਿ ਸਿਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੌਰੂ ਵਾਏ, ਰੋਵੈ ਪਾਂਡਵ ਭਏ ਮਜੂਰ, ਜਿਨ ਕੈ ਸਵਾਮੀ ਰਹਿਤ ਹਦੂਰ, ਰੋਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਭਇਆ, ਰੋਵੇ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਪੀਰ, ਅੰਤਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੇ ਭੀੜ, ਰੋਵੇ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਰੋਵੇ ਕਿਰਪਨ ਸੰਚੈ ਧਨ ਜਾਏ, ਪੰਡਿਤ ਰੋਵੇ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਪੂਜਨੀਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਨੇ ਨਾਓ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰੀ ਕਰਮ ਨਾਲ ਲੇਖੇ ਲਾਏ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਾ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਨੱਠ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੁੱਖ ਕਹਿ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉਂ ਡੋਲਤ ਨਹਿ ਸੁੱਧ, ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਆਂ ਸੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਾਂ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ, ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਖ ਤਿਸੈ ਪੈ ਆਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ, ਸੁੱਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੋਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਾਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੁੱਖ
जिन्हों तीन ताप कहा गया, यह भी जिक्र एक थां ते आउंदा है महाराज की बाणी च, जिथे तीने ताप निवारण हारा रब नूं कहा, उत्थे जिहड़े तीन ताप ने इन्हां दे बारे प्रोफेसर प्यारा सिंह जी पदम ने बड़ा सोहना लिखिया। वो कहिंदे तीन ताप, एक आद, दूजा व्याध, ते तीजा है उपाद। आद कहिंदे ने मन दा दुख, जिहदे विच चिंता फिकर कई प्रकार दा मन नूं हुंदा है। दूजा है व्याध, इहनूं कहा जांदा जिहड़ा तन दा दुख है, जिवें शरीर नूं कोई तकलीफ, बुखार चढ़ गया, सिर पीड़ हुंदी है, कोई जख्म लग गया, कोई सट लग जावे, इहनूं व्याध आख्या गया। ते तीसरे नंबर ते गल आई उपाद, जिहड़ी कुदरती कोई आफत आ जांदी है, जिवें हड़ आ गया, आकाश तों बिजली डिब गई, किते भूकंप आ गए, इस तरीके नाल कुदरती आफतां जिहड़ियां ने, इहनूं तीजे रूपे दे विच उपाद शब्द नाल संबोधन कीता। हुण जिहड़ा पहला आद मन दा दुख है, ये मन विच चिंता ते फिकर पैदा हुंदा है, मेरा की बनेगा, मैं किवें गुजारा करांगा। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भलिया जिहड़ा चिंता दा दुख है ना, चिंतत ही दिसै सब कोए, चेत है एक तही सुख होए, जे एक नूं चेते करें। याद रखी, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही हे, जल मैं जंतु पायन तिना भे रोजी दे। चिंता छड़ के तू चिंतन कर, उहदी याद विच जुड़, जिहड़ा पत्थरां विच वी जीव पैदा करके रिजक दे रहा। दूजा है तन दा दुख, ये शरीर दे विच आउंदा है, लोक दुखी होके कुरलाउंदे ने, परेशान हुंदे है। वेखो एक सिख इतिहास दे विच किड्डा किड्डा वड्डा तन दा दुख जालमां ने सिखां नूं दित्ता, पर जिहड़े गुरु नाल प्यार पा के मन्ने नाओ सोई जिण जाए, नाम नूं शब्द नूं मन्नण वाले सी ना, उन्हां ने इहदे ते जित किवें प्राप्त कीती है। भाई साहब भाई मनी सिंह जी, जिन्हां दे परिवार दे 56 तों लैके 90 मैंबरां दा जिक्र मिलदा है कि शहीद होए ने, सचखंड श्री हरिमंदर साहब दरबार साहब दे मुख ग्रंथी भी रहे, गुरु कलगीधर पातशाह दे 52 कवियां दे विच भी उन्हां दा थां, ते श्री अमृतसर साहब विखे संगतां दा जोड़ मेला होवे, इस वास्ते हकूमत नाल करार भी कीता सी कि जोड़ मेला होवे ते टैक्स भी दे दांगे। चाहुंदे सी कि सिख मिल गिल के रहण, ते सिखां दा आपस विच प्यार बणिया रहे, पर हकूमत ने वेख्या कि सिख कट्ठे होण ते असीं हमला करिए, राम तीर्थ दे नां ते नां दे थां ते फौजां आ गईआं, पता लग गया ते चिट्ठियां भेज के सिखां नूं रोकता, कई सिख आए शहीद हो गए, बहुत सिख शहीद करने सन, पर उहदे विच हकूमत कामयाब ना हो सकी, ते भाई मनी सिंह जी नूं गिरफ्तार करके लाहौर दी धरती ते लजाया गया, जिथे नखास चौंक है। भाई मनी सिंह जी दी जिथे बार बार कई लालच दिते जांदे है, डरावे दिते जांदे है कि तुसीं अपना धर्म छड़ के दीने इस्लाम कबूल करो, उन्हां इक्को गल कही सी कि मुसलमान बणिया मौत नहीं आउंदी, कि धर्म छड्डिया मौत नहीं आउंदी, ते जे मौत तां वी आउणी है ते मैं क्यों ना अपने धर्म दे विच पक्का रहां। इक्को तक उन्होंने कहा सी कि मैं गुरु घर च बड़े सुख वेखे आ, तुसीं कहिंदे हो मेरी उम्र वड्डी हो गई है, ते इस उम्र दे विच मैं चार सुआस लैणे ने ते जिंदगी बचा लां, पर मैं एक गल कहिंदा, ये मनुखा जीवन बाणी च भावें दुर्लभ कहा गया, पर यह भी चेते रखियो कि यह मनुखा जीवन ते भावें फिर भी मिल जाए, पर जिहड़ी सिखी है ना, यह बहुत वड्डे भागां नाल मिलदी है, हर किसी नूं यह दात नहीं जे प्राप्त होंदी, बहुत वड्डे कर्म, बहुत वड्डे भाग होण किसी दे। उन्हां एक गल कही, कहिंदे एक बंदे नूं तुसीं आखो कि हीरियां दी खाण छड्ड दे ते गंदगी दी कोठड़ी संभाला, ते सियाणा बंदा किहड़ा होएगा भला, जिहड़ा गंदगी दी कोठी संभालूगा कि हीरियां दी खाण संभालेगा, सियाणा ते उही है जिहड़ा गंदगी दी कोठड़ी छड्ड के हीरियां दी खाण दी संभाल करे। ते उत्थे एक विद्वान ने बोल लिखे, कहिंदे हर हीरियां दी खाण तन गंदगी दी कोठड़ी, तन गंदगी दी कोठड़ी, हर हीरियां दी खाण, जे तन दित्तिआं हर मिले तां भी सस्ता जाण, जे तन दे के रब मिलदा है, सिखी मिलदी है, गुरु दा राह, इस राह ते मैं तुरदा रहिंदा ना, गुरसिखी कमाउंदा है, ते इह तन ते टोटे टोटे करवा के भी मैनूं सौदा बड़ा सस्ता है। उन्हां ने सिख शहीद करने सी, शहीद नहीं होए, हुक्म होए उन्ने इहदे शरीर दे टोटे टोटे कीते जाण, बंद बंद कट्टण दा हुक्म होया, पर जलाद दे अंदर भी किते रब बैठा सी, उन्हें सोचिया निक्के निक्के टोटे की करने आ, गुट तों ही वढणा शुरू करदा, जदों गुट ते उन्हें हथ रख्या भाव टोका रख्या, ते भाई मनी सिंह जी कहन लगे गुट तों नहीं
आ उंगल दे पोटे तो पहला बंद आरंभ हुंदा है ते इत्थों कट्टणा आरंभ कर। वेखो तन दे दुख नूं शब्द नाल जुड़े होए मन्ने नाओं सोई जिण जाए किद्दां वेखो जित प्राप्त कर दे। जलाद डर के कहिंदा तेरे निक्के निक्के बाबा टोटे करांगा ते तेनूं दुख नहीं होएगा तकलीफ नहीं होएगी। ते उदों जिहड़ी गल्लबात जलाद नाल होई एक कवि ने बड़ा प्यारा लिखिया है, वह कहिंदे मेरे बंद बंद कट तेनू हुक्म होया है बंद बंद कट्टण दा ते मैं रोम रोम गुरु की सिखी की खातर आपा वारन वास्ते गुरु के दर ते नित अरदासां करदा ते मेरी अरदास नू भी भाग लग जाए। उन्हां बड़े प्यारे बोल लिखे, कहिंदे अंग अंग ते कातल मेरे खंजर जदों चलाएगा कट कट के बंद मेरे जद धरती ते विछाएगा। सुन ऐ कातल रल मिल दोवें अजब तमाशा लावांगे दर्द प्याले भर भर के असी जाम वांग पी जावांगे। दर्द प्याले भर भर के असी जाम वांग पी जावांगे। कहिंदे बाबा ये दी तकलीफ बंदे नूं माड़ी जी सुई वज जे कोई माड़ी जी दातरी वज दे ते चीकां मार दे तेरे टोटे टोटे करांगा तेनूं दुख नहीं होएगा। कहिंदे तूं सोचदा दुख होएगा पर मैं तेनूं एक गल दस दिया, सूल सुराही खंजर प्याला जिसने आ सुनाया है बेंग कसाइया दा सहना जिसने सद इश्क दा लाया है असी उस मुरशद दे चेले हां ये साबत कर दिखलावांगे। सुन ऐ कातल रल मिल दोवें अजब तमाशे लावांगे। असी उस मुरशद दे चेले हां जिहड़े सपुत वार के सब कुछ वार के भी माछीवाड़े दे जंगलां च कहिंदा मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। यह रमज मैं तुहाडे नाल तां सांझी कीती, तन ते तकलीफ ते बहुतियां दे आउंदी है, कई बंदे डोल जांदे ने पर मन्ने नाओ सोई जिण जाए औरी कर्म ना लेखे लाए। जिन्हें नाम ते भरोसा रखिया शब्द ते गुरु ते भरोसा रखिया ना उह ना ते मन दे दुख नूं दुख जाणदे ने चिंता तो भी मुक्त हो गए तन दे दुखां दा भी परवाह नहीं करदे। ते तीजे नंबर ते जदों कुदरती आफत आउंदी है ना उत्थे भी उन्हां दा भरोसा झक्खड़ झांगी मीह वरसे भी गुर देखण जाई समुंद सागर होवे बहु खारा गुरसिख लंघ गुरु पै जाई वड्डे तो वड्डे दुख ते परेशानियां दे विच भी उह कदी हौसला नहीं हारदे। 47 दा दुख आया 84 दा आया इस तो पहलां घल्लू घारे वरते ने बड़े बड़े पर हर दुख परेशानी विच उह गुरु दे भरोसे ते रहण वाला सिख कहिंदा की हो गया जिहड़ा सोना है ना उहदी खोट कढ़णी होवे कुठाली च पाईए सेक लगदा है भार भावें घट जांदा है पर शुद्ध रूप प्रगट हुंदा है। वड्डा नुकसान हो के भी चढ़दी कला च सिख रहिंदा है। बड़ा नुकसान होया पर उस अवस्था च किड्डी चढ़दी कला नाम दे सदका कहिंदे सिख खत्म हो गए रहा कोई नहीं। ते आप जी तरन तारण साहब तो जो चबाल वल जाओ ना उत्थे पिंड आउंदा है नूरदीन। एक ते उस पिंड विच ब्रह्म ज्ञानी महाकवि संतोख सिंह जी चूड़ामणि उन्हां दा जन्म होया पर नाल ही उस पिंड दे नेड़े पहलां एक स्थान आउंदा है वह स्थान है गुरद्वारा बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह। बहुते नहीं सी पर दो सिख गुरु के भरोसे ते जदों पता लगा कहिंदे सिख मुक गए पर उन्होंने डांग दे जोर दे नाल ही नाका ला के दसता सी जे सिख गुरु के भरोसे ते चले ते कला कला सिख भी खालसे दा राज कायम कर सकता। ये गुरु की कला है। तीन प्रकार के दुख आद ब्याद ते उपाद तीने ताप निवारण हारा दुख अंता सुख रास ताको बिघन ना को लागे जांकी प्रभ आगे अरदास। इस करके भलिया सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए सारे सुखां दा दाता जिहड़ा मालक है अपने दुख उहदे अगे आके दसी रब्बा मैनू आ तकलीफ परेशानी वह तेनू चढ़दी कला विच जिउणा सिखाएगा हर दुख ते परेशानी ते जित प्राप्त कर लेंगा। पर बंदियां दे कोल जा जा के रो रो के अपना दुख ना दसी। अज दा बचन महाराज दा जिस मानुक पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया सारा संसार दुखी जिहदे अगे भी बेनती।

0: राग दा ना है पंजवें पातशाह दे बचन 1120 अंग ते महाराज कहिंदे भलिया जीवन तो मिलिया पर रब दे नाम तो बगैर सारी जिंदगी व्यर्थ चली जाती है। रैण गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। बड़े प्रमाण महाराज ने दसे जिन्हां च पता लगता किदां जिंदगी व्यर्थ चले जाती। उत्थे भाई साहब भाई गुरदास जी भी दसते ने चिरंकाल मानस जन्म निर्मोल पाए सफल जन्म गुर चरण शरण कै लोचन अमोल गुरदर्श अमोल देखे श्रवण अमोल गुर बचन धरन कै नासका अमोल चरनार बिंद बासना कै रसना अमोल गुरमंत्र सिमरन कै हस्त अमोल गुरदेव कै सफल चरण अमोल पर दक्षिणा करन। एक एक अंग की सफलता का तरीका भाई गुरदास जी ने दसिया। कहिंदे रब का सिमरन नहीं किया कई बार सारी जिंदगी च सिफर ही कट्ठिया कीतियां ने सिफर की वैल्यू नहीं होंदी जिन्नी देर तक रब के नां का एका नहीं पै जांदा। एके तो बगैर सिफर की वैल्यू नहीं। अवर काज तेरा कितै नाकाम मिल साध संगत भज केवल नाम। ताई महाराज ने भाई गुरदास जी राही एक थां बचन किया जैसे बैल तेली को जानत कई कोस चलियो। तेली का बल्द चलता तो कई कोहां है पर अखां बंद हुंदियां जदों वेखदा है तो कोलू दे आले दुआले नैन उगरत वही ठाउं ही ठिकानो है। अखां खोलदियां उत्थे ही नजर आउंदा। बंदा भज दौड़ बड़ी करदा है पर मिलदा कख नहीं। महाराज कहिंदे रब दे नाम तो बगैर जिंदगी व्यर्थ जांदी है।
1: तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात।
0: भलिया रब ते चेते आउंदा नहीं तज गोपाल उहनू भुल गया है। होर रंगां ते प्यार दे विच मस्त है। चेता की है खाण दा भी चेता है ते पहनण दा भी चेता है। सोना पालवां कपड़े वधिया पालवां वन सुवनिया चीजा का चेता है। यह नहीं महाराज कहें कि खाना नहीं तो पहनना नहीं। खाना भी है इथों तक महाराज कहें तिनका खाधा पैंदा माया सब पवित है जो नाम हर राते। क्योंकि साढ़े त्रैमण देहोरी चलै पानी अन्न शरीर नूं अन्न पानी ने चलाना है। भूखे भगत ना कीजे ज्ञान करे ध्यान करे छड्डू ना ही पेट सभे गल्लां सुथरिया दो रोटियां दे हेठ अन्न तां चाहीदा है। पर महाराज कई कहें अन्न छड्ड के मिल जाए अन्न ते छड्डिया भी नहीं मिलता। छोड़े अन्न करे पाखंड भी महाराज ने कहा। कहिंदे खाना है पर थोड़ा सवे थोड़ा ही खावे। पहनना है पर पहनण दे अग्गे इन्ना चेते रखी कला कपड़िया नूं ना वेखी। महाराज का सुखमनी साहब च एक बचन है कहिंदे जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे। आ भोजन छकदा है ना वह छकण लग्या तिस ठाकुर को रख मन माहे मन च चेते रख्या कर। फिर कपड़े पाउना जे प्रसाद पाठ पटंबर हडावे तिसे त्यागत अवर लुभावे। कपड़े पाउंदिया उहनू ते चेते रख्या कर। पाउणा वधिया पा पर चेते ते रख। कहिंदे इह चीजां कपड़े भोजन सब चेते है पर कहिंदे रब भुलिया होया है। कहिंदे तेरी अवस्था कहिंदे जीवन तां व्यर्थ।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है, यूनिट नंबर 210-23-23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 एफएम इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
3: कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
4: एक महावीर जैन हुए हैं जैन धर्म के अंदर, उनकी जीवनी से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है जो दास और परमात्मा कबीर जी आपको समझाना चाहते हैं। रस्यव देव जी ये एक बहुत नेक राजा थे, सतयुग के अंदर बहुत ही अच्छे राजा थे, परमात्मा को चाहने वाले थे और वेदों में कबीर देव की महिमा बहुत लिखी है। तो जो ऋषि लोग थे, जो रस्यव देव जी के गुरु ब्राह्मण थे, उनसे ये प्रश्न किया करते थे रस्यव देव जी कि वेदों में आप बताते हो कि कबीर नाम का कोई प्रभु है, कबीर कबीर देव है, तो अनुवादकर्ता कर देते थे वो कवि है, कवि है, तो उसका नाम चलो कवि है क्योंकि वो परमात्मा अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों शब्दावलियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार प्रत्येक बार करने आता है, इसलिए उसको कवि कहते हैं। हम उसको कबीर देव, वेदों में लिखा कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, वो कवि ही मान लेते हैं। तो वहां लिखा है परमेश्वर की वाणी में गरीबदास जी ने कहा है कि रस्यब देव के आईया कभी नाम में करतार है, उस कभी नाम ते आगे वे। वैसे तो कबीर देव का अर्थ कवि साहब, अगर हम वैसे व्याकरण अनुसार करें तो कवि साहब, कवि साहब माने वो जो परमात्मा उसका नाम ही कवि साहब है, कवि हम उसको कबीर साहब कहने लगे कबीर। सिर्फ उसमें अंतर है, जैसे भाषाओं में अंतर होता है, तो इस प्रकार वो कबीर परमात्मा तो रस्यव देव जी के वही परम अक्षर ब्रह्म उस प्यारी आत्मा को समझाने के लिए कभी नाम से आए कभी, और कहने लगे मैं वो परमात्मा हूं जो वेदों में वर्णित है कभी, क्योंकि वो अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने रस्यव देव जी को भ्रमित करके अनुवाद गलत करके उसको कभी सिद्ध कर रखा। वैसे वो कबीर देव है, उसको कबीर देव ही बोलना चाहिए हमने, कबीर देव। जैसे यजुर यजु है, यजु कहने से क्या लाभ, यजुर्वेद साथ बोलना दच्चवा बात, तो वो कबीर देव है, कबीर देव कबीर साहब है। तो परमात्मा आए, रस्यव देव जी को बहुत सुंदर ज्ञान सुनाया, रस्यव देव जी बहुत प्रभावित हुए और इतना वैराग हो गया कि राज्य भी त्याग दिया, अपने पुत्रों को सबको, भरतादि को सबको राज्य दे दिया। लेकिन उसी समय ये ब्राह्मण लोग ये गणे परमात्मा एक एक ही ऋषि रूप में आते हैं मिलते हैं, तो बाद में ऋषभ देव जी को उन नकली काल प्रेरित गुरुओं ने ब्राह्मणों ने भ्रमित कर दिया कि वो झूठा है, कपटी है, वो गलत ज्ञान बताता है, ब्रह्म से ऊपर भगवान नहीं, ब्रह्म लोग तो ऊपर कोई स्थान नहीं। अब ऋषभ देव जी ने ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग 1000 वर्ष तक किया, 1000 वर्ष तक तप किया, उसके बाद निराहार रहकर कुछ नहीं खाया 1000 वर्ष तक, इतने तगड़े शरीर होते थे पहले सतयुग। तो जब उन्होंने प्रथम बार अपनी उपासना पूर्ण की और वो व्रत खोलिया, तो सबसे पहले धर्म देशना बोल रहे हैं दीक्षा को, अपने पौत्र भरत के पुत्र को, अपने बेटे के बेटे को यानी पोते को, मारीचि नाम था उसका, सबसे पहले ऋषभ देव जी ने उस मारीचि को नाम दिया। और ऋषभ देव जी केवल ओम मंत्र ही जाप करते थे और साथ में हठ योग भी करते थे, जो खिचड़ी ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा काल प्रेरणा से जो ग्रहण किया हुआ है, इसके लिए थोड़ा सहयोग लेते हैं। रस्यव देव जी ने अपने पौत्र यानी पोते मारीचि को प्रथम मंत्र दिया, पहला चेला वो ही मुंडिया, और वो मारीचि वाली आत्मा आगे चलकर महावीर जैन कहलाए, एक प्रमाण जैन धर्म का, एक जैन संस्कृति कोष 3 भागों में है और इनको वो फाइनल मानते हैं, जैसे हम गीता जी वेदों को मानते हैं ऐसे इन तीनों पार्ट को, 3 पार्ट हैं ये, तो इनको ये अंतिम मानते हैं। और प्रथम भाग में आपको दिखाते हैं, देखिए जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास प्रथम भाग, प्रोफेसर है भागचंद्र जैन भास्कर, ये कहां से प्रकाशित है, जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व प्रथम खंड, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, समंती प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। और ये कहां से प्रकाशित है, कहां से छपा है, जैन इतिहास, जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास संस्कृति कला पुरातत्व प्रथम खंड, लेखक प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक हैं डॉक्टर प्रेम शंकर द्विवेदी, मानद निदेशक कला एवं धर्म शोध संस्थान B33A1 न्यू साकेत कॉलोनी BHU वाराणसी फोन नंबर इतना। और भागचंद्र जैन दूसरा है प्रकाशक, भागचंद्र जैन भास्कर ये वही है, लेखक भी है। और ये कहां से प्रकाशित है, ये निश्चय प्रकाश, ये प्राप्त स्थान, अब ये है, ये किसने, ये पुण्य स्वर्गीय पुण्य पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन एमएम मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य समर्थि में सादर समर्पित है। यस यस, ये भाग सुंदर जैन के माता पिता की तरफ से को समर्पित है। इसके प्रश्न नंबर 175 पर ऋषभ देव के पौत्र मारीची भरत के पुत्र, यानी भरत जो इसका पुत्र था, ऋषभ देव के पौत्र मारीची अर्थात भरत के पुत्र, मारीची भरत का पुत्र था जो ऋषभ देव का पुत्र था, को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है, यानी मारीची को, और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना, यानी महावीर जैन बना, यही आत्मा आगे चलकर। 176 पृष्ठ पे जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास कला और पुरातत्व, तीर्थकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे, उनकी माता मरुदेवी थी, वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया, दो पत्नियां थी। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को जन्म दिया और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया, यानी ऋषभ देव जी के 100 पुत्र और दो पुत्रियां थी। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव एक वर्ष तक निराहार रहे, यानी कुछ नहीं खाया। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रियांश कुमार ने इक्षु रस देकर, ईख का रस, गन्ने का रस पिलाकर उनकी इस निराहार वृत्ति को यानी उस व्रत को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि, फिर 1000 वर्ष तक फिर तपस्या की उसने, ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया, या कैवल्य मुक्ति बोलते हैं, कैवल्य, अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया अपने आप 1000 वर्ष तक तप करके, और उसमें जितना उसने ज्ञान हुआ जो अभी प्राप्ति हुई उसके आधार से धर्म देशना यानी नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना, प्रथम नाम भरत के पुत्र मारीची को दी, यानी उसको दीक्षा दी अपने पौत्र को, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने, ये महावीर जैन बना। अब यहां से हमने इतना ही लेना है बस। अब पुण्यात्माओं, ऋषभ देव जी ओम मंत्र का जाप करते थे और ये भी इसमें ओम को आगे चलकर अणोम करने लगे, अणोम अणोम अणोम नहीं, ओम है इसलिए सीधा ओम बोल दे, अलग से इसकी प्रक्रिया आने वालों ने अन्य तीर्थकरों ने कर दी। प्रथम तीर्थकर जो महान आत्मा ऋषभ देव जी थे, उन्होंने केवल ओम नाम का जाप किया। इसको ये करते कैसे थे, ओम ऐसे करते रहते थे, तो बाद वालों ने उनको अणोम कहने लगे, अणोम, लेकिन ये ओम है। तो ऋषभ देव जी ओम नाम का जाप करते थे और उन्होंने सातवां अठ योग भी करते थे, जो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण होता है, जो वेदों अनुसार और गीता अनुसार नहीं है, वो मनमाना आचरण होता है। जो वेदों और गीता से ली गई साधना है वो शास्त्र अनुकूल साधना है, लेकिन वो कितनी साधना कहां तक की है उतना ही लाभ मिलता है उसको। तो वही मंत्र, वही साधना, वही विधि ऋषभ देव जी ने अपने पौत्र अपने पोते मारीचि को दी, जो भरत का पुत्र था, और मारीचि के जीव को इस साधना के करने से कितना दुख और कितना सुख हुआ ये वर्णन करते हैं। ये देखिएगा, ये एक पुस्तक है, इन्हीं बड़े जैन संस्कृति कोश से ही निष्कर्ष निकालकर लिखा गया है। आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, कौन बनेगा सबसे ज्ञानी, यह है ओम अरिहंताम अणोम अणोमो, ये मंत्र मंत्र यज्ञ, प्रवण चंद्र जैन एम ए शास्त्री, इन्होंने इसको लिखा है। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन एम ए शास्त्री, जम्बू द्वीप हस्तनापुर, प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बू द्वीप हस्तनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश, ये इनके प्रकाशक हैं। और ये मुद्रित है दिनेंद्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स मेरठ, फोन नंबर इतना। ऋषभ देव जी के कोई गुरु नहीं थे, वो अपने आप ही अपनी साधना किया करते थे। हम 293 पर चलते हैं, वो जो मारीचि वाले जीव ने जो साधना ऋषभ देव जी से लेकर की थी, ओम नाम का जाप और अन्य साधना जो तप किया, उससे उसको क्या परिणाम मिला, 293 पृष्ठ पे। आओ जैन धर्म को जाने, विशेष प्रकरण, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम हैं, एक वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एमएम, वर्धमान। अब 294 पे आओ जैन धर्म को जाने, महावीर भगवान, श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? उत्तर है पूर्वा नामक भील की पर्याय से। प्रश्न, पूर्वा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, वो पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था, उसने सागरसेन मुनि राज से मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की पर्याय यानी शरीर से कहां गया? उत्तर है कि पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर स्वर्ग से कहां गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीचि नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, यानी इस मारीचि से पहले का भी इसका एक जीवन बता रखा है। उसके बाद ये ऋषभ देव का पोता मारीचि हुआ, महावीर का जीव, फिर वो ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्म स्वर्ग कहो ब्रह्म लोक कहो, ब्रह्म लोक में गया ऋषभ देव जी से नाम लेकर ओम नाम का जाप करके, ये ब्रह्म लोक में गया, ब्रह्म स्वर्ग कहो ब्रह्म लोक कहो, ब्रह्म लोक ब्रह्म स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ, फिर जटिल के शरीर को छोड़कर कहा गया सौधर्य स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर स्वर्ग से कहा गया इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम क्षत्री से अग्निसह नामक पुत्र हुआ, अग्निसह फिर कहां गया स्वर्ग में गया, फिर स्वर्ग से कहा गया भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ, अग्निमित्र कहां गया महेंद्र स्वर्ग में गया, ये इंद्र के लोक में गया, फिर महेंद्र स्वर्ग से कहा गया ये मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ, फिर भारद्वाज कहा गया महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर इंद्र के लोक में गया, फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव होया। ओहो, और अब देखना, ओ मेरे मालिक, कलेजा मुंह को आता है, अब निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहां गया, अब उसके बारे में क्या बताता है? उत्तर है अनेकों भव धारण किए, जो इस प्रकार है 1000 वर्ष 1000 आंख के वृक्ष, 1000 बार तो आंख का वृक्ष बना, और 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव यानी केले के, और 3,000 बार चंदन के वृक्ष के शरीर धारण किए, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, और 60,000 बार वैश्या के, 60,000 बार वैश्या के भाव, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर, ओहो यहां फोड़ लिए कर्म, 5 करोड़ बार शिकारी बना, 20 करोड़ बार हाथी के भाव, और 60 करोड़ बार गधे के भाव, 60 करोड़ बार गधा ते कब बना बतेरा हे भगवान, 60 करोड़ बार, ओहो 60 करोड़ बार गधे के शरीर, और 30 करोड़ बार कुत्ते, रही खी कसरिया निकलगी कुत्ते के जीवन, उत्तरा एक का कुत्ते का जीवन देख लो कितना दुखदायी होता है, और 30 करोड़ बार कुत्ते का शरीर, 60 करोड़ बार नपुसंग के भाव, और 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के शरीर भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, और 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और केवल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। अब पुण्य आत्माओं, अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें आकर के यही बताना चाहते हैं कि तुमको परम संत मिला नहीं, सत साधना प्राप्त हुई नहीं, सत्संग तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से तुम्हारे ये जन्म और मृत्यु के कष्ट समाप्त नहीं हुए। और गीता जी में बताया है कि जो व्यक्ति तत्वदर्शी संत से संबंधित हो जाता है, उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान से फिर वो तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है, फिर वो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जरा मरण यानी बुढ़ापे और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न। आज आप जी को बताया, शुरुआत की थी कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वारे, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। ये चारों खानी यानी चार प्रकार से जीवों की जो है उत्पत्ति होती है, अंडरज जेरज उद्बुद शब्दज, यानी अंडे से जेर से, जैसे मां के गर्भ में मनुष्य पशु है इनमें, और अपने आप जैसे सुरसी हो जाती है, अपने आप जो उत्पन्न होते हैं, ये चार प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं, इनको चार पार्ट बोलते हैं, चार खानी चार विभाग। इन चारों विभागों में उत्पन्न प्राणियों की संख्या कितने प्रकार की होती है, 84 लाख प्रकार के शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है, चार खानी में भटकते धक्के खाते। जैसे इन ऋषभदेव जी ने भी नाम लिया, इनकी भी जन्म मृत्यु अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यही आगे चलकर बाबा आदम हुए ऋषभदेव जी, और बाबा आदम फिर उसमें स्वर्ग में गए हुए हैं, स्वर्ग के अंदर एक तरफ नरक है एक तरफ स्वर्ग है, स्वर्ग में विराजमान है और वहां भी दुखी। मुसलमानों वाले पुस्तक में लिखा है हजरत मोहम्मद जी की जीवनी में कि बाबा आदम, हजरत मोहम्मद ने देखा वो एक बार हंस रहे थे एक बार रो रहे थे, हजरत मोहम्मद ने पूछा उस फरिश्ते से जबराइल से कि ये कौन व्यक्ति है, जबराइल ने बताया कि बाबा आदम है, ये रो और हंस क्यों रहा है, कि स्वर्ग के अंदर तो इसकी अच्छी संतान है, जो नेक नीति से राह करती वो स्वर्ग में है, और जो निकम्मे थे भक्ति करी नहीं मांस मिट्टी खाते थे वो नरक में पीटे जा रहे हैं, ब्रांड माटी हो रही है। जब ये नरक की तरफ देखता है तो अपने निकम्मे संतान को दुखी होते हुए देखकर रो रहा है, और जब स्वर्ग की तरफ देखता है अच्छी संतान स्वर्ग के अंदर आनंद से रह रही है तब वो खुश होता है, तो पुण्य आत्माओं, इस स्वर्ग में भी नो की नो दुर्गति जैसी पृथ्वी पर है, ऐसे दुख और सुख समांतर चल रहे। एक ही स्थान है सतलोक, जहां जाने के बाद जीव की फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। अब आपने ऋषभ देव जी से प्राप्त दीक्षा, मारिचि जी की क्या दुर्गति हुई आपने पढ़ लिया, और यही आगे चल के महावीर जैन हुआ, वही आत्मा महावीर जैन कहलाई। अब आपने देखा कि 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता और केवल 80 लाख बार देवता बना। अब उस देवता ने के चाटे गधा कुत्ते भी बन गया। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि ये काल की भूल भुलैया है। यथार्थ ज्ञान ना प्राप्त होने से जीव की ऐसे ही दुर्गति रहती है। कई पुण्यात्मा जो होते हैं वो अल्पज होते हैं, कुछ श्रद्धालु ज्यादा होते हैं, वो ये सोचते हैं कि कहते हैं कई बार कि यदि सभी आप वाली साधना कर लेंगे, कबीर जी वाली भक्ति कर लेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे तो यहाँ पृथ्वी पर कौन रहेगा, तो खाली रह जाएगी पृथ्वी, तो एक कैद है, कैद एक दुख स्थल है, और हम पहले वहीं रहते थे सभी, तो पड़ी रहेगी खाली, ये निरेग्रह धक्के खाते अंडे ये और घूम लेगी खाली, अपन के लेना इसका ऊपर, हम तो अपने सतलोक चले जाएंगे, वहां हमारा निज स्थान है। तो ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी है कि यहां कौन रहेगा, इसने के फूकांगे जरा इसी दुर्गति होने लग रही जीव की, एक पल में भरोसा नहीं, के हो जा कभी प्रलय हो जा, कभी सूखा पड़ जा, कि तब भूकंप आकर दुनिया मर जा, कि तब साइक्लोन आ गया लाखों लोग मर जाते हैं, कभी सर्दी सतावे गर्मी सतावे सैकड़ों बीमारियां, तो यार यहां रहना के शौक है तो मजबूरी फंस रहे हैं।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नू 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
3: कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
4: यही है आओ जैन धर्म को जाने। ये आओ जैन धर्म को जाने, हम 295 पृष्ठ पर आगे हैं। हमने ये पढ़ लिया 60 करोड़ बार गधे के भाव शरीर, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुसंग, 20 करोड़ बार क्षत्रि, 90 लाख बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव और 60 लाख बार गर्भपात से मृत्यु और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त किया। केवल 80 लाख बार तो देवता होया और बाकी ऊपर दुर्गति अलग से हुई। उसके बाद फिर कहा गया राजग्रह में स्थावर नामक ब्राह्मण होया, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तत्पृष्ठ नामक नारायण हुआ, फिर सातवें नरक में गया। ये सातवें नरक में और सातवें नरक से महावीर भगवान का जीव कहां गया? सिंह गिरी पर, सिंह गिरी पर्वत पर सिंह हुआ, फिर प्रथम नरक में गया। आगे हम ज्यादा ना देख करके यहां देखते हैं, संसारासुर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक का पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, तनंतर उसके बाद वही मारिची वाला जीव 24वें तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, ओ तेरा गजब, 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, कहते साच कहो तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाइयो, और साच ना पूरा पावते झूठा जगपति आइयो। परमात्मा कहते थे कि मैं सच्ची कहता हूं और मेरी बात पर कोई यकीन विश्वास नहीं करता, और ये झूठों के जो गलत साधना बता रहे हैं, ऐसी दुरुक्ति तुम्हारी हो रही है, उन सब के ऊपर सब विश्वास किए बैठे। अब विचार करो, मारीची वाले जीव ने, महावीर जैन वाले जीव ने मारीची रूप में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी से उपदेश लिया था, और ऋषभ देव जी ने, क्योंकि और कोई मंत्र था ही नहीं, वेदों अनुसार साधना दी थी, उस ओम नाम के जापत और हठ योग करने से, तप करने से, तो क्या क्या उपलब्धियां हुई अभी आपने पढ़ा और सुना। उसके बाद महावीर नाम से उत्पन्न हुए, और उसके बाद महावीर जी का कोई गुरु नहीं था, इन्होंने स्वयं ही प्रेरित होकर के घर त्याग दिया, अपने आप काफी वर्षों तक निराहार रह करके, निवस्त्र रह करके साधना की, और उसके बाद इसने 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं, राजा ऋषभ देव जी से वेदों अनुसार साधना प्राप्त करके इन्होंने कष्ट भी बहुत उठाए, लेकिन 80,00,000 बार देवता भी बन गए, क्योंकि पुण्य और पापों का लेखा अलग अलग भोगना पड़ता है। और अब इसने ना तो वेदों अनुसार साधना रखी महावीर के रूप में, और उसने आगे अपने अनुभव से वेदों से हटकर पाखंड मत चला दिए 363, जो वर्तमान के जैनी भाई और ये गुरु लोग उस महावीर जी द्वारा बताए गए पाखंड मत के आधार से साधना कर रहे हैं। इनको तो कुछ भी ना मिल रहा है, स्वर्ग में सपने में भी नहीं जा सकते, ये तो सीधे ही नरक और 84,00,000 योनियों में भटकते रहेंगे। ये दास का जो उपदेश है अपना बनाया हुआ नहीं है, ये परमात्मा का विधान बताया, और पुण्यात्मा इसको महसूस करें, गहराई से सोचें और इससे पीछा छुटवाएं और परमात्मा की भक्ति करें। इन्होंने स्वयं लिखा कि उन्होंने 363 पाखंड मत चलाए। पाखंड माने व्यर्थ, वेदों अनुसार साधना करने वाले मारीची जी की भी कितनी दुर्गति हुई, लेकिन कुछ राहत अवश्य साथ मिली। फिर उस राहत ने के चट है, गधे और कुत्ते की योनि भोगी, फिर देवता बढ़ गया। तो यहां परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी, चार खानी में गधे कुत्ते सुअर की योनियों में धक्के खाते फटकते, चार खानी में भरमते कभू ना लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। सतगुरु यानी सच्चे गुरु के संपर्क में आने से यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके सत साधना करने से ये सारा बाईपास निकाल दिया। ना तो 84 लाख योनियों में जाना, ना गधे कुत्ते सुअर की शरीरों में धारण करना, और इससे बाईपास निकाल करके या तो मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा यदि भक्ति पूरी ना हुई, और साधना पूरी हो गई तो हम सतलोक चले जाएंगे। अब क्या बताते हैं, सात समुद्र की मसी करूं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनराय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि ऐसा संत मिल जावे, सतगुरु मिल जावे, जो इन सभी दुर्गतियों से, इस प्रकार के सभी कष्टों से, सभी योनियों से बचा दे। उस सत मंत्र के आधार पे कहते हैं उस संत की सात समुद्र की मसी करूं इंक, सातों समुद्रों की इंक बना लूं, स्याही बना लूं, और लेखनी यानी कलम बना लूं सारे वृक्षों की, एक वृक्ष के एक टहनी की कितनी कलम बन जा, ढेर लग जा छोटी छोटी कलम। और कहते हैं पूरी पृथ्वी जितना कागज मेरे पास हो, और यदि ऐसे संत के गुण लिखने लगूं ये सभी समाप्त हो जाए, गुण पूरा ना हो। अब एक गधे का जीवन लिखने लग जाओ, एक दिन में उसकी के दुर्गति होती है, फिर कुत्ते का लिखो, सुअर का लिखो, फिर पुराने का, इतने कष्टों के अरुण से परमात्मा ने हमें बचा दिया। यानी सतगुरु के उपदेश ने, सच्चे गुरु जी के सच्चे मंत्र ने हमारे को कितना बाईपास निकाल दिया। कहते गुरु मानुष कर जानते, ते नर कई है अंधे, होए दुखी संसार में फिर अग काल के फंदे। ऐसे संत को यदि आप जी केवल मानो ही समझ कर ट्रीट करते हैं तो कहते वो मूर्ख व्यक्ति है। पुण्यात्माओं, परमात्मा परमेश्वर स्वयं आए थे, मनुष्य रूप ही है उनका, लेकिन वो तेजो में शरीर अधिक है, उस तेजो में शरीर को सरल करके हल्का तेज पुंज का शरीर बना करके वो एज इट इज प्रगट हुए थे छोटे से शिशु रूप में, धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े हुए लीला की। तो ये ज्ञान प्रचार किया करते, सुख यही दिया करते जो आज परमात्मा आप जी को दे रहे हैं, वही कबीर जी इस दास के माध्यम से। तो उस समय हम परमात्मा से इसलिए दूर रहे, उनके संग नहीं जा सके, क्योंकि हम उन अज्ञानी अनाड़ी ऋषियों के द्वारा भ्रमित ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को निराकार मानते रहे। इसलिए यदि परमात्मा कबीर जी कहा करते थे हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर गरीबदास खालिक दनी, कबीर जी कह रहे हैं मेरा नाम कबीर, लेकिन ये बातें किसी के गले उतरी नहीं कि परमात्मा तो निराकार होता है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमने परमेश्वर को परमेश्वर माना नहीं, ओनली एक आदमी मान के और ज्ञानी मान के कि विद्वान है और कुछ सिद्धियां रखता है, इसलिए हम परमात्मा के साथ चिपके रहे, हमने उनको परमात्मा नहीं माना। और कबीर जी कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, होवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। तो गुरुदेव को, वो तो भगवान स्वयं आए थे और इस दास को भेज दिया अपना आप जी को समझाने के लिए, अब मुझ दास को भी अपनी उन्होंने पावर दी है मालिक ने ही इस दास को, और वही सब परमात्मा ही कर रहे हैं, कबीर जी की शक्ति ही आप जी का सुख, आप जी को सुख दे रही है और साथ में आपको दुखों का निवारण कर रहे हैं, और साथ में ये ज्ञान वही बता रहे हैं उन्हीं की वाणी से। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि यदि आपने गुरु जी को परमात्मा के तुल्य नहीं माना तो फिर भी काम कच्चा रह जाएगा, आपकी साधना विफल हो जाएगी। एक नियम है गुरु मानुष कर जानते वो नरक ही है अंध है। अब गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, क्योंकि सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि नकली गुरु गणे, इसलिए सतगुरु शब्द लगाना पड़ा। और वास्तव में गुरु शब्द पर्याप्त है, जैसे आध्यात्मिक गुरु संत होते हैं, लेकिन वो संत नकली हैं, उनका ज्ञान कंप्लीट है नहीं, जिस कारण से अब सतगुरु शब्द लगा दिया। तो यहां लिखा है कि जो आप जी को सतगुरु मिल गए उनको गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, वो तो प्रत्येक व्याख्या में पूर्ण है, प्रत्येक संज्ञा में, प्रत्येक उपमा में। तो कहते हैं गुरु मानुष कर जानते हैं, यदि गुरु जी को तुम मानुष मानते हो, सिंपल मैन मानते हो, ते नर कहिए अंध, वो ज्ञानहीन है, ज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं, वह दुखी संसार में आग गए फिर काल के फंद, काल के बंधन। अब देखे अपने महावीर जैन की के दुर्गति हुई, कहते ये संकट फेर रहेंगे जब सतगुरु मिल गए, सतगुरु को आपने एज ए गॉड रिस्पेक्ट नहीं किया, कंसीडर नहीं किया। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और ओवे दुखी संसार में अग्ग काल के फंद। जैसे एक गणित का प्रश्न होता है, एक गणित के अंदर एक प्रश्न ब्याज का एक चैप्टर होता है, उसमें सपोज करना होता, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, जबकि वास्तविक मूलधन करोड़ों रुपए में होता है, उस करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, और जब तक हम 100 रुपए मूलधन नहीं मानेंगे, भले ही वो करोड़ों रुपए की तुलना में एक छोटी राशि है, तो हमारा वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। इसलिए आप जी ने गुरु जी को मान लो, गुरु जी भगवान, गुरु जी गॉड है हमारे, और फिर उनको जैसे हम परमात्मा के सामने जाते हैं, परमात्मा से जाएंगे हम, जैसे वह भगवान आ जाते हैं, यदि आप ऐसा ही व्यवहार करोगे ऐसे वैसे, तो परमात्मा नाराज होंगे। तो परमात्मा नाराज ना होना चाहिए, परमात्मा के नाराज होने के कारण तो हम यहां कष्ट उठा रहे हैं। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांप दे, ना जानू किसी बात से मारा टूट न जावे ने, इतना भय लगे परमात्मा गुरु जी के दरबार में आकर परमात्मा तुल माने। और ऐसे कोई बात, ऐसा मन में कोई विचार, कोई ऐसे अवगुण ना हो जा जिससे गुरु जी का और आपका प्रेम भंग हो जा, यानी जो श्रद्धा आपकी है उसमें कोई फर्क पड़ जावे, वो नहीं पड़ना चाहिए, फिर व्यर्थ हो जाएगा आपका जीवन। तो इस प्रकार हमने गुरु जी को परमात्मा मान के, क्योंकि जाना है भगवान के दरबार में, और वहां पर सबसे पहले इस दास के रूप में आपको प्रभु मिलेगा, परमेश्वर मिलेंगे, त्रिकुटी पे, त्रिकुटी पे जाकर तुम्हारी वहां छटनी होएगी। यहां आप जी ने जैसी श्रद्धा इस दास के प्रति बनाई है, जैसे पौधे का, जैसे गेहूं का पौधा पक जाता है, बाली आ जाए ऊपर, अपने आप पता लग जाता है कि ये गेहूं है, और उसके अंदर एक कोबाड़ भी होता है, गेहूं जैसा डंगा खरपतवार, एज इट इज सेम टू सेम प्लांट होता है, वो दोनों एक जैसे पौधे होते हैं, लेकिन जब वो परिपक्व हो जाते हैं और दोनों के ऊपर वो बाली आ जाती है, तब उनका पता लगता है कि वो खरपतवार है, यो गेहूं है। ऐसे ही जिन्होंने यहां गुरु जी को परमात्मा तुल जान कर और निष्कपट भाव से, सच्ची श्रद्धा से, साधना सेवा भक्ति कर रखी है, तो त्रिकुटी बजाते ऐसे बाल लकड़ाओगी थर अपने आप, और पता लग जाएगा कि यू खरा हर यो खोटा। तो उस खराब पौधे ने निकाल के किसान बाहर फेंक देता, फिर वो आग में फूंक दिया जाता है, व्यर्थ होता है गधे खाऊं से। और गेहूं को अपने ला करके कोठिया में डाल लेता है। तो ऐसे ही आप जी ने जैसे भाव से, जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति सच्चे दिल से यहां की है, तो वहां आपका फल आपके सिर पर लिखा पाओगा, और वहां फिर आपकी कैसी गतिविधि होगी, आपकी कैसी वहां भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, तो वहां उसी का वहां एक समझो परीक्षा एग्जाम है आपका, और वहां भी आपने ऐसा ही मन में दोष कपट रखा जैसा यहां रख रहे हो वैसा ही वहां होगा, जैसा दिन में करते हो वैसा स्वप्न आओगा। अब जैसे आप जी को स्वप्न आते हैं तो जैसा व्यवहार आप यहां इस दास के साथ कर रहे हो वैसा स्वप्न में आएगा, तो इसी प्रकार वहां भी एक स्वप्न होगा, आप होगे परमात्मा होंगे इस दास के रूप में, तो वहां अगर आपने आपकी रिहर्सल में कमी रहेगी, आपने ट्रेनिंग ठीक ना करी, तो वहां से रिजेक्ट कर दिए जाओगे। फिर वो व्यक्ति कई हजार युगों तक मनुष्य जीवन भी प्राप्त नहीं करेंगे, तो वहां से गिरे हुए इंसान फिर बहुत देर से संभलते, क्योंकि इतना दिन और संग रहे और इतना ज्ञान सुना फिर बकवाद भर ली। तो इस प्रकार पुण्यात्मा आप जी ने बहुत उत्तम स्थान पर जाना है और उसके लिए उत्तम ही कर्म आपने करने होंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिए मिलाए। गुरु जी का कितना महत्व बता रहे हैं परमात्मा कबीर जी। जब तक आप जी की इतनी श्रद्धा गुरु में नहीं होगी, और जैसी श्रद्धा गुरु जी में है उतनी ही परमात्मा में काउंट होगी,

हो, दूध दुआ ना हो, कुत्ता फड़ी हो। अब वो छोटी मोटी को पूरा जन्म की को कमाई हो, अब वो उतनी सौंप दी, आप खाली खोखा होगी। हम चरण इसलिए छुआ करते कि ये खुश होकर अपना आशीर्वाद दे दे, कुछ लाभ मिले। और चरण छोड़ते कौन सा बुढ़े के पैरों का दर्द ठीक हो है। अगर मान ले किसी बुजुर्ग के, चाहे बड़े के चाहे छोटे के, आपसे छोटे बहन बेटी भाई जैसे बहने हैं, आपसे बड़ी सास का की पिंडी दुखे हैं, तो उनके पैर दबाओ खूब अच्छी तरह। एज है मरीज जान के, आवश्यकता समझ के वो बेसक सेवा करो, मालिश करो, सिर में करो, पैरा में करो, तलविया में करो, है किसी तरह सेवा करो, पां दो गर्म पानी ते जब को ठंड लाग रही होता है, सेवा कर दो। लेकिन एक औपचारिक जो चरण छूने, ये भक्ति मार्ग में बाधक है, ये नहीं करना। तो वहां गुरु गोविंद दोनों खड़े, और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न होगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। उन आत्माओं, इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। जैसे आप जी के पुण्य जब तक चल रहे हैं पूर्व जन्म के, तो तब तक आपको कोई आपत्ति नहीं, संतान भी अच्छी है, पुत्र पुत्री होगी, उनकी शादी विवाह भी कर दिए, उनको भी संतान होगी भगवान उनके संस्कार वश। और जब तक आपके पुण्य हैं, तो आप जी को कोई आपत्ति आई नहीं। जब आपके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे, उसके बाद आपके पापों का दौर शुरू होगा, तो पापों का दौर जब शुरू होगा तो कष्ट पर कष्ट आएंगे। जो व्यक्ति घने दुखी हो जाते हैं ना, वो क्या कहा करें कि मारा राम रूठ गया, हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो गया, इसलिए हम पापती आएगी। अब राम रूठ गया, पुण्य अक्षीण हो गए, पाप शुरू हो गए, तो कहते हैं कबीर हरी जय रूठ जा, राम रूठ गया आपका, गुरु की शरण में जावे। कबीर हरी जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। आपका राम रूठ गया, दुख हो गया, आपत्ति आई, तो संत की यानी परम संत की शरण में जावे गुरु। अब गुरु कहो तो सदगुरु कहो, क्योंकि आप समझ गए इस बात को कि झूठे जो नकली हैं वो गुरु भी नहीं है लेकिन गुरु कहलाते, इसलिए सतगुरु कहा। लेकिन अब सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो, आपको समझ में आ गया कि जो पूरे संत हैं उन्हीं के विषय बता। अब परमात्मा क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फेरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले हैं जिन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में ना जाने कहां कहां पर्वतों पर गुफाओं में भरमिया भटक्या, और संत मिले भगवान जैसे, संत मिल गए, परम परम संत मिल गए, वो सुख दिए जो भगवान दिया करता है। जैसे आप जी, एक तरफ तो हैंड पंप है जिसमें से जल निकलता है मीठा, और एक तरफ आपके घड़े में जल है। जब तक आपके घड़े में जल है और आप कहीं घर पे हो चाहे कहीं मजदूरी कर रहे हो, दुकान पे, खेत में, कहीं पर भी हो, तो आपको कोई आपत्ति नहीं, प्यास लगी गट गट पानी पी लिया। और जब मटके का जल समाप्त हो गया घड़े का, फिर आपत्ति आई, समस्या आ गई, प्यासे मर गए, फिर चले कहां, हैंड पंप के पास। हैंड पंप पर गए और वहां हैंड पंप की सेवा की, और फिर मटका भर लिया, सेवा में पूजा यानी जो उसका विधि विधान है वो हलाया, उसको डंडा फेरा उसका हैंड पंप का हैंडल, और जल भर लिया, मटका भर के आ गए। तो आप जी के पुण्य क्षीण हो गए, आपका मटका खाली हो गया। कहां जाइए, संत के पास, गुरु जी के पास, और जैसे गुरु जी साधना सेवा बताए वो हैंडल लाइए यानी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, साधना कीजिए, फिर मटका भर जाएगा।
और ये

दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोबिंद दियो मिलाए। अपने आत्मा एक तरफ हैंडपंप है और एक तरफ एक मटके में आपके घड़ा भरा दे रहा है, और एक तरफ परमात्मा खड़े हैं, एक तरफ गुरु जी खड़े हैं। आपसे परमात्मा प्रसन्न कर रहे हैं कि तुम किसको चाहोगे। हैंड पंप को चाहेंगे हम, बुद्धिमान होगा तो। कोई नो कहे तुम मटके का जल चाहिए या हैंड पंप, तो हैंड पंप में तो 1000 मटके भर ले, और हैंड पंप अब जैसे परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के रूठियां रूठते गुरु की शरण में जाए, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना करे सा है। आप जी ने हैंड पंप की ठीक मेंटेनेंस करी नहीं, हैंडलिंग ठीक करी नहीं, हैंड पंप खराब हो कर दिया। हैंड पंप खराब हो गया तो गुरु जी रूठ गए, अब वो जल नहीं मिलेगा, वो जल मिलेगा नहीं जो हैंड पंप से मिलना था। जब आपका राम रूठा, गुरु जी के पास गए, आपको विधि बताई, साधना दी, अपना आशीर्वाद से कुछ लाभ दिया, और यदि आप जी ने गुरु जी को रुष्ट कर लिया, हैंड पंप ही खराब कर दिया, तो फिर क्या मिलेगा। हैंड पंप खराब होगा तो बेसे गलाए जाइए डंडे ने, कुछ लाभ नहीं होना उस हैंडल से। गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बेहू ना हो, ताको काल घसीट ही राख सके ना को। कई कह घर ने भक्ति कर लेंगे, क्योंकि यहां आते हैं उनके मन का दोष निकलता नहीं, और फिर उनको हम यहाँ खुरका धमका देते हैं, भाई बीड़ी शराब मास तुम्हारा को तुम छोड़ नहीं रहे तो मत आया करो, फायदा क्या होगा। या कोई और गलतियां करते हैं, मन में दोष नहीं निकलता तो वो फिर घर छोड़ जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, खा लो धक्के। पृथ्वी पर कोई नहीं संत आज के दिन, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। और जानबूझ साची तजय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। तो यहां से जो आप गुरु जी रूठ जाते हैं, गुरु के दिल से उतरे, जो गुरु जी के मन से उतर गया कि आदमी ठीक होना, या बहन बेटी भक्ति नहीं कर रही है, या बकवाद करते हैं, ड्रामाबाजी करें, तो वो दिल से उतर गए तो उनका नाम कट गया। और कहते उनको काल घसीट ही राख सके नहीं कोई। तो यहां क्या बताए हैं कि गुरु के रूठते हरि की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे साए। एंड पंप खराब कर लिया तो आपका जो है जल ने लाभ देना बंद कर दिया, जल मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंधे, होवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। यहां भी दुखी होंगे वो व्यक्ति जिस किसी पुण्यात्मा ने यहां पर इस दास के साथ रहकर भक्ति करी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, और फिर अपनी नालायकी ते को गलती करके यहां से निकल गया और चला गया कहीं और धक्के खा भैया घर पे रहता है। तो उसको जब तक उसके पुण्य इस 3 साल में किए हुए सत साधना और भक्ति के जो पुण्य हैं वो जब तक उसके चलेंगे, वो मटका भरा हुआ है, भर लिया उसने, और अग एंड पंप खराब कर दिया। जब तक वो घड़ा पानी का चल रहा है, रोजाना 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास घट ही रहे, उसमें प्रवेश नहीं हो रहा, आउटपुट ही है, इनपुट नहीं है उसके अंदर, तो एक दिन वो अक्षीण होंगे। हो सकते हैं वह 2 वर्ष में हो 4 वर्ष में हो 5 वर्ष में हो 10 वर्ष में, फिर उनकी वही दुर्गति फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि हैंडपंप खराब कर दिया। और जो हो गए गुरुद्रोही, ठीक है ऐसे व्यक्ति है नया, फिर दुखी सुखी बान लग रहे हैं, 1 साल माया कोई 4 साल माया धक्के खा के बिरान मैटी होली, दोबारा फिर आ रहे, आना चाहिए कोई बात नहीं, 1-2 बार हम खुरकावा धमकावांगे, लेकिन हमने तो उतने अच्छे लगते हो अपने बच्चों की तरह। और जो हो जाते हैं गुरुद्रोही, उसको तो कभी असंग जन्म भी भगवान मनुष्य जन्म नहीं देगा, ठीक है अब तक वो पुण्य है उसके चलते रहेंगे, जितने 1 वर्ष चलेंगे 10 वर्ष चलेंगे 20 वर्ष चलेंगे, आगे वह दुर्गति होगी, इस प्राणी की सोची भी नहीं जा सकती। तो पुण्यात्माओं, जय इब कै सतगुरु मिले, जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख अखोरो चरण ऊपर शीश धरूं,
कहो जो कहनी हो। अब क्या बताते हैं, ये जो वाणी हम बोलते हैं प्रतिदिन, उनका अब निष्कर्ष समझ में आएगा आपके। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। अब जब सही ज्ञान आपको हो जाएगा, उस समय समझ में आओगी कि हे परमात्मा, हे गुरु जी, आप हमसे भूलियो मत। आपके पास से लाखों लोग आ जाएं, क्योंकि सब दुखी आत्माएं आकर यह सुख ग्रहण करती हैं, तो वो तो आपको चाहेंगी। आप हमने ना बोलिए, क्योंकि आपको तो मेरे जैसे बहुत मिल जाएंगी आत्माएं भगत, लेकिन मुझ भगत को आप जैसे सतगुरु नहीं मिलेंगे इस पृथ्वी पे। जय इब कै सतगुरु मिले, सतगुरु नकले गुरु तो मेरे मिल लिया हमने, सब दुख आखों रो। ये बातें हैं कोई आत्मा जो दूसरे पंथों के पास, संतों के पास 20-20 वर्ष, 30-30 वर्ष बर्बाद करके रोते हैं, यहां पर उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखते। जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है, रात को भी कहते हैं बैठ कर रोते, हमारा क्या हाल हो गया, ये कहाँ गया, इतना जीवन बर्बाद कर दिया हमें, हैं ऐ परमात्मा बड़ी दया हुई, अब सतगुरु का मार्ग मिल गया। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखों रो, चरणों ऊपर शीश धरू, कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिलेंगे, वो पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। अब जो दूसरे पंथों से आते हैं, जब उनको पता चल जाता है, क्योंकि इस ज्ञान पुस्तक हमने छापी है ज्ञान गंगा, उसको पढ़कर अब दूसरे पंथों की पुण्यात्माएं रो रो कर आ रही हैं, भटक रही हैं और बताती हैं कि इतने दिन मैंने वहां बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं मिला, ये नुकसान हो गया, इतना जीवन बर्बाद हो गया। कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुशलाते, आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। और फिर कहते हैं गुरु जी आप ना भूलियो हमें, और आप भूल गए फिर कहां जाएंगे, हमें कोई ठिकाना नहीं इस पृथ्वी पर। हम जैसे तो आप जी को बहुत अच्छी आत्माएं और भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन आप जैसे गुरुदेव हमें नहीं मिल पाओगे।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: गैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 Trent Avenue, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 Trent Avenue, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो, 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंड

0: इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबयो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सवै करतारा मोर अच्छा निज कार दै करिया सब बैरन का वाज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करी अहो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सिवकन को सिवगुन सुख दियो सत्रन को पलमो वध कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिट्टी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सबहू जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़ उचारत पेदा जाको पेव ना पावत वेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप आपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केहो बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उतपुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा वै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा
सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवात उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे असितोज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निकट न है। रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट तरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कार मो सब होई दुष्ट छाह छुआ सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फासते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी।

सर्व ठौर मोह हो सहाय दोष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सवा बहुभेद कहें हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहो सब तुहे बखाने ओ। दोहरा सगल द्वार कहो छाड़ कर गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दो ता गाव हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा।

जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे चेत आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री

सलोक राज कपटं रूप कपटं तान कपटं कोलो गर्भत है संचंत विखया छलं शिदरं नानक बेनहार संग न चालते राज कपटं रूप कपटं तान कपटं कोल गर्भत है संचंत विखया छलं छिद्रं नानक बेनहार संग न चालते पेखंदड़ की भुल तुम्मा दिसमा सोहना अड ना लहंदड़ मुला नानक साथ न जुलई माया पौड़ी चल दिया नाल ना चला सो क्यों संजिया तेस का कहो क्या जतन जिस ते वंजिया हर बिसरे क्यों त्रिपतावा ना मन रंजिया प्रभु छोड़ आन लागा

楞那那个宝本地呀प्रभु छोड़ आन लागा नरक समझिया हो कृपाल दयाल नानक पाओ पंजिया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।